0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: आज प्यार की होड़ी डील।
2: डील बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हमारा यार सौदा सौदा।
2: ओहो
1: दोनों डील करा

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: लोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मेनकाराय नमः शिवाय। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आज मैं शिव पंचाक्षर स्तोत्र का महात्म्य श्रावण मास के उपलक्ष्य में मैं बताऊंगा। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का बहुत महत्व शिव पुराण में दिया गया है। शंकराचार्य जी द्वारा विरचित ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र का हम यहाँ पर अर्थ समझते हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र भगवान शिव की अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली स्तुति है। इसकी रचना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई मानी जाती है। इस स्तोत्र में नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के 5 अक्षरों नमः शिवाय की महिमा का वर्णन किया गया है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति से नियमित पाठ करने से मन को शांति प्राप्त होती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इसके पाठ से पापों का क्षय होता है, आत्मबल बढ़ता है तथा जीवन में सुख समृद्धि आरोग्य और कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप में श्रावण मास के सोमवार, मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि तथा प्रदोष के व्रतों के अनुसार अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। यदि पाठ से पहले भगवान शिव का ध्यान किया जाए, अंत में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप किया जाए तो साधना भी अधिक फलदायी मानी जाती है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र केवल भगवान शिव की स्तुति नहीं है, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच आध्यात्मिक संबंध को दृढ़ करने का एक दिव्य माध्यम है। श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ इसका पाठ करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन मंगलमय बनता है। भगवान शिव की आराधना के लिए शिव पंचाक्षर स्तोत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्षर स्तोत्र का जप अनुष्ठान करने से हमारे श्रावण मास में पुण्य की अत्यंत प्राप्ति होती है। भगवान शिव की आराधना के वक्त हम अवश्य महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, बिल्वाष्टकम का जप करें, मंत्र जप करें और हम भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक आदि करें। अवश्य हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, नियमित सुने, क्योंकि पंचाक्षर स्तोत्र से हमारा जीवन धन्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।
2: This is Radio Voices.
3: Assalamualaikum.
4: Kim Chumarishes.
5: Namaskar. Shodharandariki.

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन।

0: बगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु कहते हैं, फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? साथ में रहने वाला ही साथ रहने वालों का वास्तविक चरित्र जानता है। शिवे देते मंगल नाम मुखे मत्स्य निरंतरा तस्यम दर्शनादये पवित्राम सते सर्वदा। जिसके मुख से शिव यह मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। महागुणान गणते सोपी महात्मापि गिरंजये देहते वचना सद्य पुरुषो याति माधव। हे गिरीश जी, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह दीजिए ही इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। परिनिंदा विनाशाय स्विनंदी यशसे मता। पर निंदा विनाश के लिए और आत्मा निंदा यश के लिए कही गई है। वचनम त्रिवेदम शैलम लौकिते वेदितम अच सर्वजनाति शास्त्रज्ञोम निर्मल ज्ञानम चक्षुषाम असत्य महते पश्याप्रिद्रम श्रुते सुंदरम सुबुद्धि वक्ता सूत्रेहिम हितम चैव कदाचन आधौ प्रति जानकम परिलाकेनम सुघावह दयालु धर्मशलेन हिम बोध जयते बंधनान श्रुते मात्रम सुधातुल्यम सर्वकाल मुखावह सत्य संसार हितकरम वचनम श्रेष्ठमपीवलम। हे शैल, लोक एवं वेद में तीन प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सब का जानता है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण।

मैं बाबा जी गिरीश शर्मा, आज थर्सडे 6 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, कल जहाँ से विराम लिया था, चलिए हम लोग वहीं से आगे बढ़े।

भगवान शिव माँ सती से कहते हैं कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाया, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं।

0: ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेशु जदपि कहे हु शिव बारहु बोले विहसि महेशु हरि माया बलु जानी जिया। यद्यपि भगवान शिव ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। शंकर जी क्या कहते हैं वो हम लोग कल पाठ करेंगे। आज इसको यही विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति ही शांति ही शांति ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा द्वारा वेद मंत्र की प्रस्तुति। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री।

स्मर्शत् तद्धावतो न्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वादधाति। प्रिय श्रोताओं, ये ईशोपनिषद का चौथा मंत्र है, बहुत ही प्यारा मंत्र है। इसमें ईश्वर का वैदिक स्वरूप बताया गया है, ईश्वर कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। अनेजत अर्थात गति न करते हुए भी सर्वव्यापक है। मनसो जवीयः अर्थात मन से भी अत्यंत तीव्रगामी है। जहाँ जहाँ हमारा मन पहुँचता है ना, भगवान वहाँ पहले से ही विद्यमान है। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा मनसो जवीयः, मन से भी अत्यंत वेगवान है। और न एनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, इस प्रभु को, देवा का मतलब है हमारी इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि वह प्रभु तो पहले से ही सब जगह पहुँचे हुए हैं, गंतव्य स्थान पर विराजमान है। तद्धावतः अन्यानत्तेति तिष्ठत, वह परमात्मा मानो ठहरा हुआ भी दौड़ते हुए दूसरों को भी लांग जाता है। तस्मिन् नपः मातरिश्वादधाति, उसी परमात्मा के आश्रय से वायु आदि जो पदार्थ है अर्थात गर्भस्थ जीव है, वो अपने जलों को, अपने कर्मों को धारण करता है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा कैसे हैं, तो गति रहित होते हुए भी सर्वव्यापी है। बिनु पग चले सुनै बिनु काना, बिनु कर कर्म करै विधि नाना। अत्यंत मन से वेगवान इंद्रियों को हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो इंद्रियों से अर्थात वो तो पहले से ही वहाँ विद्यमान है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं उससे पहले प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, और उसी के आश्रय से जीवात्मा अनेक कर्मों को करता है। तस्मिन् नपः, अपह का अर्थ है कर्मों को, मातरिश्वा का अर्थ है वायु भी है और गर्भस्थ जीव भी है। सारे संसार के लोग उसी के आश्रय से गति कर रहे हैं, सारी दुनिया उसी के आश्रय से हैं। वेद में ईश्वर को एक माना गया है, भगवान एक है। ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। अर्थात परमात्मा इंद्र है, मित्र है, वरुण है, अग्नि है और दिव्य है, गरुत्मान है। वो एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात परमात्मा एक होते हुए हम उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा कि हमारी इंद्रियां भी उस तक नहीं पहुंच सकती है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति। तद्धावतो न्यानत्तेति तिष्ठत, परमात्मा की कृपा से ही, उसके नियमों से ये सारा संसार गतिमान हो रहा है। भयादस्याग्नि तपति भयात् तपति सूर्यः, अर्थात परमात्मा के नियम से ही सारा संसार गतिमान हो रहा है। सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का प्रकाश देना, वायु बह रही है, ये सब परमात्मा की कृपा से हैं। ओम शम।

0: मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश की श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम अपादग्रीसमभवत् सो अग्रीस्वरा भरत चतुष्पाद ओत्वा भोग्य सर्वमां दत्त भोजनम्। परमात्मा सृष्टि के आदि से सब संसार में व्याप्त कर सब सुखों का भंडार हैं।

मुपासाते सनातनम्। मनुष्य अनेक सुखों से युक्त होकर बहुत अन्नवान होगा जो जगत पिता परमेश्वर की उपासना करेगा। ओम सनातनमे नमाहु रुताद्यस्यात् पुनर्नव अहो रात्रि प्रजायीति अन्यो अन्यस्य रूपयो। नित्य स्थायी परमात्मा के गुण जिज्ञासुओं को नित्य नवीन विदित होते जाते हैं, जैसे दिन रात्रि से और रात्रि दिन से नित्य नवीन उत्पन्न होते हैं। ओम शतम सहस्रमयुतम निर्बुद्ध्यम संख्ये यम स्वमस्मिन् निविष्टम् तदस्यन्नन्त्यमिपश्यत एव तस्माद्देवो रोचत एष एतत्। परमात्मा के अनंत कोष से अनंत प्राणी अपने पुरुषार्थ के अनुसार धन आदि पाकर बलवान होते हैं। इसी से वह जगदीश्वर सबको सदा प्रिय लगता है। ओम बालादि कमणीयस्कमु तैकम नैव दिश्यते तत परिषजीयसी देवता सां मम प्रिया। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होकर प्राणियों के भीतर रम कर उनको बल देता है, इससे वह सब प्राणियों का प्रिय है। ओम यम कल्याण्य जयराम मर्त्यस्यामृता गृहे यस्मै कृताशये स यश्चकार जजारस। प्रकृति जगत का कारण प्रत्येक मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर में है। परमेश्वर ने प्रकृति को अनेक उपकारों के लिए कार्य रूप जगत में परिणत किया है। वह परमात्मा सबका उपास्य देव है। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओ

0: स्वाहा।
1: जगत नियंता यम स्वरूप परमात्मा हमारे सब कर्मों को जानता है, कोई भी उसके ज्ञान से कुछ छिपाकर नहीं रख सकता। जिस सत्य मार्ग से हमारे पूर्वज पितरों ने गति की है, उसी मार्ग से हम सब देहधारी जीव भी गति करने वाले बने। जन्म मरण का नियामक परमात्मा हम प्रजाओं के शुभ अशुभ कर्मों की गति को भली भांति जान रहा है। जन्म मरण को टाला नहीं जा सकता। जिस श्रेष्ठ मार्ग से हमारे पूर्वज चल चुके, उसी मार्ग को अपनाते हुए धर्मानुकूल कर्म करते रहें।
0: ओम यज्ञपतिं ऋषय एन साहुर्भिर्भक्तं प्रजा अनुतप्यमानं मयव्यान्तोकनापयान् रराधसं नेष्ठिभिः सृजतु विश्वकर्मा।
1: क्रांतदर्शी ऋषि, पुरुषार्थ करने वाले यज्ञ प्रेमी और परोपकारी लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उन्हें पुण्य आत्मा मानते हैं, क्योंकि वे सब जीवों पर दया और उपकार करते हैं। जो लोग यज्ञ करते कराते हैं और अन्य प्राणियों से स्नेह करते हैं, वही लोग धर्मात्मा होकर सत्य सिद्धांतों पर चलते हुए धर्म और सत्कर्मों को व्यवहार में उतारते हैं। सुंदर रूप से सृष्टि को सृजन करने वाला परमात्मा जो विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध है, वही सबको सुंदर रीति से कर्म करने की प्रेरणा देता है। वह परमात्मा सबको परोपकार करने की प्रेरणा दें, जिससे हम सब प्रेरणा प्राप्त कर परोपकार करते रहें और सदा आनंद में रहें।

मन को प्रसन्न करने वाले हितकारी रस तथा शरीर पोषक अन्न का सेवन नियम अनुसार करना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत सुखकारी हो। जैसे पुत्र के लिए पिता सुखकारी होता है, जैसे मित्र अपने दूसरे मित्रों को हितकारी कार्य में लगाकर सुख का मार्ग दिखाता है, वैसे ही हितकारी अन्न और औषधीय रस हमारी आयु को बढ़ावें और हमें सुख प्रदान करें। आहार का सेवन नियम अनुसार करना चाहिए। बार बार असमय व प्रतिकूल समय पर आहार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित कर संसार को अपनी ऊर्जा से बसाता है एवं दिन रात को बढ़ाता है, वैसे ही सोम शक्ति राजा के समान हमारे जीवन काल का विस्तार करने वाला हो और हमें सुख प्रदान करने वाला हो।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सिडनी पिया ने कहा कि वे लेबर पार्टी के भीतर अपनी आवाज़ बुलंद करने और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अलायंस डू शांजमां के साथ बने हुए हैं।

उनका कहना है कि देश की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और बढ़ते कर्ज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार के सकारात्मक कदमों को स्वीकार करते हुए आर्थिक विकास, अधिक राजस्व सृजन और सार्वजनिक वित्त के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया। नवजात शिशु के पोषण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास में स्तनपान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष का विषय जो कारगर है उसे और मजबूत करें रखा गया है, जो स्तनपान के लाभों और माताओं को सही जानकारी व सहयोग प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। कई मॉरिशस वासियों के लिए सामाजिक आवास बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने देश भर में आवास दिए जाने की प्रगति की जानकारी दी, लेकिन चाबियां सौंपने से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं अभी पूरी करने की जानी बाकी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक पोजीशन पेपर के अनुसार मॉरिशस का कानून समान लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारों की मान्यता न मिलने पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक याचिका दायर कर सकते हैं। और विदेश में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नौवहन मार्ग पर ओमान के साथ समझौता कर लिया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मस्करिन्स के दक्षिण दक्षिण पूर्व पर विकसित एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य और अस्थिर हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व तथा ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होती रहेगी, कभी कभी सामान्य से जोरदार वर्षा हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18, अन्य इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:37 पर और आज शाम 5:54 पर सूरज ढल जाएगा। RM3 Radio.

तो पछी शरीर आपो आप रिलैक्स्ड थई जाय छे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आजना आपणा भक्तिमय गुजराती गीतोना कार्यक्रमनी शुरुआत आपणे भक्तिमय गीतोथी करीशुं. पण फक्त भक्तिमय गीतो नहीं होय, तमारा माटे फिल्मी गीतो पण अमे चलावीशुं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आजना आ प्रथम गीतनी साथे, जेमां ध्वनित जोशीए पोतानो स्वर आप्यो छे अने देवी भजनमांथी लेवामां आवेलुं आजनुं आ प्रथम गीत.

0: वो हमारी साथे
1: बाबू भाई सेंटिमेंटल नू आ गीत एकदम आज आपने सेंटी करी गयू है ने विद दिस भाई जीवन में कई करवू होय ने तो जल्द

0: जलसा करो पंचायत नहीं, कारण के पंचायत तो आखू गाम करी ज रह्यु छे। माटे जे पंचायत करे तेने पंचायत करवा दो, पण तमे ए पंचायत मां ना पड़ो मारा वाला मित्रों, कारण के पंचायत मां पड़वा थी टाइम पण वेस्ट थाय, एनर्जी पण वेस्ट थाय, अने आपणे कहीए ने के आपणी वृत्ति आपणा इमोशन्स पर आनो बहु मोटो असर पड़े छे। एनीवेज बेक टू रेडियो मनोरंजन, आवो मारी साथे गुजराती गीतोनो कार्यक्रम, आप सब कोई नो साथ अमे आपी रह्या छे। एंड कमिंग अप विथ द नेक्स्ट सॉन्ग, जिगरदान गढ़वीना वॉइस मां मुकायेलो आ ब्यूटिफुल रोमांटिक ट्रेक।
1: ब्रेकअप एक जन केवी रीते नक्की करी शके?

लगन लागी रे एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन अने आ साथे ज फरी एक वार ऐश्वर्या मजुमदार ना वॉइस मां मुकायलो आपणो आगलो गीत राधे राधे एनर्जेटिक सॉन्ग एनर्जी एवरीवेयर विद द म्यूजिक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक रेडियो मनोरंजन पर आवो मारी साथे

भक्ति में शक्ति। नमस्कार, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। भक्ति माध्यम होती है प्रभु के समीप आने का। पर्वत की ऊंचाई तो हम देख लेते हैं, पर पर्वत से ऊंची होती है भक्ति की चोटी। चलिए इसी ऊंचाई का आनंद लेते हैं और गणपति जी की जय जयकार से आरंभ करते हैं।

शिव जी का पूजन हम मंदिर में तो करते हैं, पर शिव जी बसते हैं भक्त के मन में। आपने हृदय में अगर शिव जी को बसाया है तो बस इतना हम याद रखें कि अपने हृदय में बसाकर शिव जी की मूरत को भक्त मन को मंदिर बना लेता है और रमा रहता है शिव भक्ति में।

करके सब कुछ जगदम्बे माँ के चरणों में, भक्त मन की शांति का आभास करता है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है माँ के दरबार में, हर भक्त के अंदर माँ का बराबर तेज समाया है। आइए नमन करें हम माँ शक्ति करुणामयी जग जननी को।

से जीवन का मूल्य पा लेता है मनुष्य। तारेंगे राम जी, उबारेंगे राम जी, ये नैया जीवन की है, पार लगाएंगे राम जी। बस राम रमैया गाते चलिए, राम से लगन लगा।

नाम का धन पाकर सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाए बजरंगबली, सारे भक्त आपके चरणों में भक्ति अर्पण करते हैं। हे मारुति नंदन, जो प्रेम आपने रामचंद्र जी से भक्त

कालिया नाग से जूझकर मानव रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जी को आइए सौ सौ बार प्रणाम करें। माखन चोरी करके ब्रजवासियों के लिए प्रेम की गंगा बहाने वाले कान्हा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण करें। हरे कृष्ण का जाप करके आइए मन में प्रेम एवं भक्ति की

श्वेत वस्त्र पहने कमल पे विराजे, हाथों में लेकर वीणा, माँ सरस्वती मिटाती हैं अंधेरे भक्त के मन से, ज्ञान के उजालों की ओर अग्रसर कराती है माता, अज्ञानता से परे कराती हैं शारदे माँ। माता सरस्वती का गुणगान करते हुए हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक पहुंच जाएंगे। माता हर प्राणी को ज्ञान का सागर प्रदान करें, यही प्रार्थना माँ से है। जय माता सरस्वती।

0: सुनिया संक्षिप्त समाचार आपसे भी धीमा नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को नमस्कार संसद में बदलाव होने की संभावना है फॉर्म मिलिटों प्रोग्रेसिस के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष के नेता बन सकते हैं वे जोले जोंगा की जगह लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं अपने तीन सांसदों पोल बेहोंजे जाना बेहोंजे और चेतन बाबूलाल के साथ एफएमपी पिछले मई से मुख्य विपक्षी दल हैं चेतन बाबूलाल ने हमें पुष्टि की है कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोकुल को अपना आवेदन सौंप दिया है अब संविधान की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेना राष्ट्रपति पर निर्भर है सांसद वेरोनिक लोगोविन ने से इस समय रोज हिल की आजसु द्वारा पूछताछ की जा रही है वे सुबह 9:30 बजे इसके ठीक बाद एंटी ड्रग स्क्वाड कार्यालय पहुंची रेनियन और मोशस के बीच 155.7 किलो कैनाबिस की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है इस मामले के कारण उनके पति गुलशन गोविंद और रविंद्र चिमाजी की गिरफ्तारी हुई है सांसद वेरोनिक लोगोविन की एक एसयूवी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की गई है कथित तौर पर उसमें गांजे के निशान मिले हैं पुलिस जांच के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा इस जोड़े की संपत्ति की भी जांच की जा रही है बच्चे का पोषण करना उसकी रक्षा करना और पहले दिन से उसका साथ देना नवजात शिशु के स्वास्थ्य से के स्वास्थ्य में स्तनपान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसके लिए समर्पित विश्व सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष चुना गया विषय जो चीज़ें कारगर हैं उन्हें मजबूत करने का आह्वान करता है ये स्तनपान के लाभों के साथ साथ माताओं को दी जाने वाली जानकारी और उनके मार्गदर्शन द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर एक विचार विमर्श है विदेश में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई से भारत भर में मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को बाढ़ से डूबे अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस के यारोस्लाव शहर के ऊपर काले धुएं के भारी गुबार छाए हुए हैं जो देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक का घर है क्षेत्र गवर्नर इसे दुश्मन के ड्रोन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा हमला बता रही हैं और उनका कहना है कि 92 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं तथा मलबे के कारण 3 घरों में आग लग गई है तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए थोड़ी देर में शोक समाचार कालीमाई रोड रिवियर जुहांपा में 63 साल के 63 years old के श्री भेदानंद दौतल जो आज मैकेनिशियन मोटरसाइकिल महाराज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर कालीमाई रोड रिवियर जुहांपा से उठाकर उत्तरी रिवियर जुहांपा की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रॉयल रोड मिडलैंड्स में 39 साल के 39 years old की श्री विष्णु नेमचंद जो बेस्ट नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी माँ इंदिरा नेमचंद के घर रॉयल रोड मिडलैंड से उठाकर मिडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM मोरा पेटिट रिविया में 70 साल के 70 years old के श्री गंगा प्रसाद जगधारी जो सुनील कैप्टन बातू नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे मोरा पेटिट रिविया से उठाकर शुबेल की

0: भूमि दी जाएगी क्रमिशन टुडे एट 3 पीएम। रामजतन रोड बिजुकाप में 82 साल की 82 इयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती कालकी प्रसान, जो चंद्रावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे देवराज लक्ष्मणिया के घर रामजतन रोड बिजुकाप से उठाकर खौंबा की शमशान भूमि दी जाएगी क्रमिशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: RM3 Radio.

0: खाना सफर।
1: नमस्कार, 12:10 हुए हैं। 6 अगस्त गुरुवार का दिन, विनीता आपके साथ और यहाँ पर हम साथ देने के लिए आए हैं, खूबसूरत गीतों का सौगात लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी एकदम तैयार। तो चलिए, यहाँ पर पुराने गीतों का सफर शुरू हो चुका है और तीन देवियाँ फिल्म का ये गाना था आप सुन रही थी। बारी है हमारे दोस्तों की कि वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमारे खूबसूरत जो गाने हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डेडिकेशंस भी होते हैं, खासतौर पर जो लोग इस समय हमें परदेश में सुनते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि भाई कहते हैं हमारी पसंद के कुछ गाने हो जाए, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ गाने तो ज़रूर होते हैं उनके। तो चलिए, अभी के लिए हम खूबसूरत गीतों के सफ़र में शामिल करने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम का अगला गाना। और ये जो प्यारा सा नगमा है, हम नज़र करते हैं हमारे उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं। अगर आपको पुराने गाने पसंद हैं तो हमारे साथ ही रहिएगा।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: भाई जन्म जन्म का साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जब भी आती हूँ यहाँ रेडियो मनोरंजन पर कोशिश करती हूँ कि हम साथ रहे, और हमारे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं दुनिया के कोने कोने से निकल कर आते हैं, वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और बस खुशियाँ बांटते रहे, हम एक दूसरे का साथ देते रहे और प्यार बांटते चले, है ना हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे ट्रैवल आपके नाम, साथ में लक्ष्मी बबीता सुल्ताना कांदाय वी हैव अनवर साथ दे रहे हमें। एंड चलिए जी यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मी कहती है मैं अभी अभी घर पहुंची और घर पहुंचते ही मैंने रेडियो ऑन किया, थैंक यू। हाय हर्ष हाउ आर यू डूइंग। चलो जी यहाँ पर हम एजे का वेलकम करते हैं, वीना फकीर एंड ज्योति गोली, नेक्स्ट गाना रामदयाल गोली तोरा जदू दियाल लालमन अर्दल तमन्ना नियाम्बर फैमिली के लिए। बबीता ओझा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। वहीं पर सोबी कैसे हो जी, थैंक यू जी। हाँ बिल्कुल जैसा आपने कहा, ऑलवेज शाइनिंग। जाजू कैसे हो, ये नाम मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले का जो कैबरे गाना होता है ना जिसमें हेलन नाचती है, ऐसे ऐसे नाम तो ऐसे ऐसे मुझे लगा कुछ। थैंक यू, यहाँ पे सरोज साथ में है, थैंक यू हर्ष। बना पिची टू यू ऑल्सो। अगर आप लोग लंच ले रहे हैं, खूबसूरत गीतों के सफर में एक गाना तो बनता है जो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। राज जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना फॉर माय फ्रेंड शिवानी रामफल जो इस समय कॉमा से काम कर रहे हैं, और बाकी के डेडिकेशन इस गाने के बाद।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: चलिए भाई यहाँ पर आयशा का वेलकम करते हैं साथ देरी हमारे थैंक यू कविता अनु साथ देने के लिए आप भी जुड़ गई हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करेंगे फॉर एके और माधुरी विजय देवीना बंधु रोज धनजय रोशन एजे की तरफ से उनकी वाइफ अंजू के लिए वी हैव पूजा रोहन गीता सीयू अमरेश सिंह जवाहिर जो साथ दे रहे हैं हमारे

0: सुहाना सफर।
1: इतना खूबसूरत गाना था, है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ, जैसा मैंने कहा कि हमारे इस प्रोग्राम के साथ दुनिया भर के लोग जुड़े रहते हैं, कोने कोने से निकलकर हमारे इस प्रोग्राम की लाइव में, जो कि हमारा टिकटॉक है रेडियो मनोरंजन का, उसके साथ जुड़े रहते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू वेलकम बीबी लतीफ़ा, जो कैनेडा से हमें सुन रही हैं। थैंक यू सो मच, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथ में हमारे वी हैव शैलेंद्र, गाविन तिलक, वेदना है कैटरबोन से साथ दे रही हैं, मिस्टर नूरुद्दीन हमेशा की तरह फ्रांस में हैं और पेरिस से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। एंड वी हैव नीलिमा, कल्याणी हरी, सरिता, सुनीता और हमारे साथ हैं दानी जगरू और विमी तैयब भोला। एम जे वेंस, कैसे हो जी, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हमेशा की तरह कभी मिस नहीं करते, रोज़ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। अभिषेक शर्मा, नमस्कार, आपका हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं।
2: RL3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम है और सुहाना सफर प्रोग्राम में हमारे साथ कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। सो वी हैव धनुष, भावना, वी हैव ललिता, नलिनी, सुनीता एंड भाई राजीव, रुकैया गजवी से हमें सुन रही हैं, वहीं पे कौन दोस्त की किचन टीम हमें सुन रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हो, खाना बना रहे हो, वेरी गुड, नाइस। एंड अनवर अपने दोस्त चंद्रानी के लिए गाना मांग रहे हैं, वहीं पे आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं, मजिंदर आपका वेलकम करते हैं, ललिता, भाई संजीव और बाबू लाल फामिल के लिए गाना मांग रही हैं, वहीं पे अंबेला लक्ष्मण का भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और बहुत सारा प्यार उनके लिए। साथ में यहाँ पर छोटे भाई पदम, वी हैव विमला, लक्ष्मण, दया, माया, राम दोस्त जी आज काफ़ी जल्दी आ गए ज्वाइन करने के लिए हमें, राजीव का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। और यहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे प्यारे से भाई अवनीश, राजा सिशंकर, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स। और साथ ही साथ यहाँ पर बिरयानी खा रहे हो अवनीश, वेरी गुड, बिरयानी खाने के बाद थोड़ा चक्कर भी लगा लेना और अच्छा होता है। चलो करसी, हाय करसी, कहते हैं 6:30 PM हियर ऑस्ट्रेलिया में वो हमें सुन रही हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ पर हम शारदा लखनऊ के लिए गाना डेडिकेट करते हैं जो इस समय हमारे साथ है।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: भाई हमारी खुशी देख के किसी ने मुझे गुंजना की बहन बना दी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये है रिक्की बेल और रिक्की बेल ने मुझे गोविंदा की बना दी बहन। आगे हम नेक्स्ट गाना जो है डेडिकेट करते हैं आप सभी हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम। और माया जी कहती है आज तो लाल परी लग रही हो, थोड़ी देर में उड़ने वाली हूँ, आप साथ में आना। हम होते ना उन्हें इसीलिए उड़ने आती हूँ। शालिनी रवि नीरव के लिए गाना होगा और वहीं पे हमारे साथ अंजी और मुगम साथ में है बनक्कम अंजी। और यहाँ पर मादिल मौलाल ब्यास से ललिता चरण और धनराज जी के लिए गाना मांग रही हैं, पिकनिक आई हैं बिलोम। ऑलराइट थैंक यू। और चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, नाम है आपका अहमद मुस्तफ़ा रामजोन। उन्होंने एक इतना प्यारा मैसेज भेजा है ना कि मैं पहली बार मुझे थोड़ा झटका सा लगा एंड आई फेल्ट लाइक वाओ, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट गाना हिम नालिनी महादवा के लिए कुदन देवानंद हंस विक्की वर्षा और माविया के नाम। और वहीं पर नेहा इस समय हमारे साथ हैं और गाना जाएगा उनके बेटे शेन के लिए। और वैसे माँ बेटे की अभी हॉलीडेज चल रही है ना, और पापा यशविन जब काम कर रहे हैं तो अभी कहते हैं कि भाई वो तो काम पर हैं, अभी हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं उनके लिए, फिर बिरयानी, सबके सब बिरयानी खाने में लगे हुए हैं। चलो ठीक है, लगता है ये बिरयानी आज मुझे हॉन्ट करने वाला है। नेक्स्ट गाना संजय के लिए, हाय जिमी कैसे हो, और आयशा मुझे पता है आप यहीं हो, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है और आप थोड़ा आलियत कर रहे हो, यानी कि मेकअप शेकअप चल रहा है, इतना भी मेकअप मत लगाना कि पहचान में ना आओ, ठीक है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे मुगाम्बो खुश हुआ, ये कब खुश हुआ, कैसे खुश हुआ, वैसे आपका स्वागत करते हैं, लगता है ये भी मेरी तरह मोगाम्बे के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। नेक्स्ट गाना अब्दुल और सहरा बानू के लिए, वहीं पे रोजीदा दर्शन हमारे साथ हैं एंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी विदुला शर्मा सिगोबिन। नेक्स्ट गाना आपके लिए, थैंक यू सो मच, और आपको खुशी हो रही है मुझे जानकर अच्छा लगा। रजिया खान सलाम कैसे हो आप, एंजॉय हमारे साथ हैं, उनकी सासू मां नीता रघुनंदन के लिए गाना डेडिकेट करेंगे। और फिलहाल गाना होगा आपके लिए तकदीर फिल्म से लिया गया, उम्मीद करती हूँ ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा। एंड यहां पर कोको इज बैक, चलिए कोको के नाम गाना चलाएंगे।

आइए बाहर को हम बांट लें और जिंदगी में कभी-कभी गम भी आते हैं और कहते हैं ना कि गम बांटने से गम कम होता है, खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ जाती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या किया जाए? सुहाना सफर, सुहाना सफर। मुझे तो लगता है कि जिसके पास जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। अगर प्यार होगा तो प्यार जो है वो बढ़ जाएगा, अगर गम होगा तो कम हो जाएगा। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। अगला गाना जो होगा, चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ, उनके लिए डेडिकेट करेंगे गाना। तो यहाँ पर सरोज जी को गाना अच्छा लगा और माधुरी कहती है मेरे लिए और परी के लिए कोई भी गाना डेडिकेट कर दीजिए। तो ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट गाना मैं आप दोनों के नाम डेडिकेट करना चाहूँगी। और कोको इज बैक, थैंक यू सो मच, कहती है आप भी गाओ ना, आप इतना अच्छा गाते हो। गाएंगे गाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में गाएंगे, ठीक है। थैंक यू। एंड नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे हम आप सभी के नाम। और कहते हैं यहाँ पर कि आपके गाने इतने कमाल के हैं, मैं मोटिवेट हो रही हूँ और मुझे मन है कि मैं अब डिज़र्ट बनाऊं, यानी बिरयानी अभी आप बना रहे हैं हस्बैंड के लिए। मैं देखो, मैं तो वैसे ही मोटी और वेट दोनों का जो अलग अलग है ना, मोटी और वेट, मेरा तो वो चल रहा है। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और वैसे भी आप तो बिल्कुल पतले पतले हो ना आप लोग, पतले लोगों की बात कुछ और होती है। पता नहीं खाना खाते वो खाना जाता कहाँ, ऐसे हवा में शिट करके निकल जाता है। कोई बात नहीं जी, आप खाओ रसगुल्ला और हम यहाँ पर मुंह मीठा करते हैं गीतों के साथ, है ना। खबरदार जो किसी ने अपनी डाइटिंग तोड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, गाना होगा बेबो के लिए, ललिता के लिए, एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा। और यहाँ पर कहते हैं अगर वेदिता का प्यार साथ हो तो मेरा क्या, मेरा क्या होगा, तारीफ गुलाब के फूल जैसा होगा, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए। आप हैं पोपो, हाय पोपो, कैसे हो? अगला गाना मेरे लिए और थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट गाना अंजी आपके लिए, वैसे आपने गाइड फिल्म का गाना मांगा है, मैं ट्रैवल आपके लिए भी गाना डेडिकेट करती हूँ। और कहते हैं जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे। चलिए भाई सब मिलकर इनको खुशियाँ से भर देते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, ये तो सूर्य नमस्कार हो गया। केविन घगरू के नाम भी, हेलो ब्रदर कैसे हो, चलिए आपके लिए गाना होगा। और पालक पनीर कोई लंच के लिए बना रहा है। दीपक जी आपके लिए भी गाना चला दूं मैं, आपने नहीं बताया आप क्या बना रहे हो।

0: इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हैं. दैट्स अ ब्यूटीफुल वन. आप तो ऐसे न थे. पंक्सिलिया गया गाना हमारी स्वीट गर्ल के लिए. प्रिया, आदिल और भरिंदर जी साथ में, सत श्री अकाल आपको. इंदिरा की तरफ से राजेश, शुगर और प्रकाश के लिए गाना होगा. वहीं पे टीना, शिमला बिजादर, अंजू, नजीमा, बबीता बुला के हमारे साथ जुड़े हुए हैं. लविंग द सॉन्ग. थैंक यू सो मच अनवर. एंड सरोज कहती है एप्पल पाई बनाया हमने. एप्पल पाई को तो मैं कहूँगी बाय बाय. अभी सुचिता भगीरथी है फ्रॉम लंडन और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए. जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये गाना जाएगा स्पेशली अंजू के नाम.
1: RM3 Radio.

0: घड़ी मिलाते चलिए इस समय दिन के ठीक एक बजा है
1: नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकता है फोमिलिटों प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं वे जुले जोंगा का स्थान लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं पिछले मई महीने से फोमिलिटों प्रोग्रेसिव अपने तीन सांसदों पुल बेहांजे जोआना बेहांजे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष का सबसे बड़ा दल हैं चेतन बाबूलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्मगो कुलको इसकी औपचारिक मांग की अब संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे सांसद वेरोनिक लुगोविन के साथ रोजिल के आजसू द्वारा पूछताछ की जा रही है वे आज करीब 9:30 बजे वहां पहुंची रियूनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे की तस्करी की जांच के सिलसिले में उनके साथ पूछताछ की जा रही है जिसके तहत उनके पति गुलशन गोविन और साथ में रविंद्र चिमाजी को गिरफ्तार किया गया था सांसद वेरोनिक लुगोविन की एक एसयूवी को जब्त करके उसका परीक्षण किया गया इसमें गांजे के संकेत मिले हैं पुलिस जांच के अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा दंपति की संपत्तियों पर भी जांच की जा रही है विदेशी खबरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने दो रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल हमले किए हैं वहां घना काला धुआं देखा गया इस बीच रूसी अधिकारियों ने करीब 90 ड्रोन्स गिराए हैं मलबे के कारण तीन घरों में आग भी लग गई और भारत के कई राज्यों में दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम में बदलाव का अनुमान है कुछ दिनों की राहत के बाद अब मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी है जबकि 19 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है ये थे अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार रामजतन रोड बेजुकाप में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की कुमारी तारामती कालकी प्रसाद जो चंद्रावती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी दिन के 1:30 बजे अर्थी दिन के 2:30 बजे अर्थी दिन के 2:30 बजे उनके बेटे देवराज लक्ष्मणिया के मकान रामजतन रोड बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टू डेट 2:30 PM 70 साल के 70 years old के श्री गंगा प्रसाद जगधारी जो सुनील कैप्टन बातों के नाम से ज्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे मोगा पितृव्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 8:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
2: You're listening to RM3 Radio Man.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर खूबसूरत गीतों के इस लिस्ट में काफ़ी सारे नाम और जुड़ गए हैं। घड़ी मिलाते चलिए दिन के 1:07 हुए हैं, आज 6 अगस्त है और हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं उनका हम वेलकम करते हैं। वी हैव अर्चना डांडा फ्रॉम न्यूजीलैंड और साथ में यहाँ हमारे हैं विद्या जो साथ दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, इस समय काम कर रही हैं। पंकज राणा बेब और साथ में हमारे यहाँ पर है रेखा, गीता सीवू और नेक्स्ट गाना होगा हस्बैंड धीरज की रियाज, उनका बर्थडे है। दिव्या और वर्षा की तरफ से नमस्कार। टीना सलीमा सलाम, आपका हम वेलकम करते हैं। जीवा सिंह पिरूमाल, वी हैव सुखविंदर सिंह, गाना तो नहीं गा रहे हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह लेकिन गाना हम सुनाएंगे आपको ज़रूर। चलिए गाना होगा विद्यानंद गोपाल के लिए, कवि किशन, विद्या, सरिता मोहित, असीता रिद्धि, साथ में बिल कहते हैं कि उनकी मम्मी हॉस्पिटल में है, गेट वेल सून आंटी जी, और विमला, आरती, सना, फतेमा और बबीता के लिए गाना हम डेडिकेट करेंगे। बबीता को बड़ा मज़ा आता है स्पेशली जब हमारे गाने चलते हैं। और परी, यू आर एब्सोल्युटली राइट सरोज, चलो ठीक है। माधुरी जी कहती हैं कि जब किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो जाता है तो कभी कभी कॉकरोच को मारना ज़रूरी होता है। यस, बिल्कुल। एंड चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम ललिता के नाम डेडिकेट करेंगे, मल्लिका बंसी के नाम, और साथ में गाना होगा रेखा जी आपके लिए, एंड और गाना होगा फॉर ओके राज, बबीता जी एक बार फिर। चलिए आपके मैसेज में पढ़ती हूँ, आई हैव गॉट 75 मैसेजेस टू रीड। अभी के लिए गाना होगा आप सबों के लिए, फिल्म का नाम है यकीन।

0: भाई सपने सच तभी होंगे जब इंसान आंखें खोल के अपनी मेहनत पे ध्यान देता है।
1: सुहाना सफर
0: और यहाँ पर कार्यक्रम का हमारा अगला गाना होगा संगीता सुखारी के लिए। रेखा ताका हमारे साथ है और गाना जाएगा आपके हस्बैंड के नाम, और वहीं पे हमारे साथ जो बाकी के लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं। चले जी, यहाँ पर पूछा 1 PM का न्यूज़ लाइव होता है। जी लाइव ही होता है यहाँ पे। थैंक यू जी, थैंक यू ट्रैवल, थैंक यू सो मच। याशना अनुराधा, हाय कैसे हो, एंड थैंक यू अनवर, थैंक यू सलीमा, ठीक है चल फिर। हाँ बिल्कुल, जिनको सर में दर्द हो रहा है, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, सर्दी बर्दाश्त नहीं करते, बहुत चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं करते, यू हैव टू टेक अ चिल पिल। कुछ नहीं तो ऐसा करो, हमारे गाने सुनो, गाने में खो जाओ और रिलैक्स करो, हम यहाँ रिलैक्स करने आते हैं। शारदा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड यहाँ पर रानी के लिए गाना, विमला कहती हैं टेंशन न लेने का न देने का। एग्जैक्टली, कभी नहीं देते हैं हम टेंशन किसी को। और विधि याशना कहती है बर्थडे किसका, मेरी मुझे आपकी आपका जो मैसेज है ना वो समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे फिर से एक्सप्लेन कीजिए कि क्या लिखा है आपने। चलो तो यहाँ पर हंस भी हमारे साथ हैं, और अभी मेरा जो है पज़ल खेलने का टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं ना हमारे टिकटॉक पे, तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे पज़ल का एक पीस आ जाता है जो मुझे जोड़ना होता है। तो थैंक यू सो मच, हो गया, खेल लिया। और यहाँ पर गाना होगा फॉर वेडी क्रिस्टोन, ओके। मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने मैसेज क्या भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। समिंदा रामजीत, ओके, नेक्स्ट गाना आपके लिए मिस्टर लव, दिस वन गोज़ फॉर यू, और हैप्पी बर्थडे टू यू याशना अनुराधा। गाना चलिए अभी हम चलाते

0: चलिए जी, यहाँ पर गाना होगा विश्वनाथ प्रयाग के लिए, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। साथ में जीतन दुलवा, समिंदा, सुनीता, सनवीर, संध्या, जिनका आज बर्थडे है।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: वेलकम टू एस्थर, सुभाष कदवाल और साथ में है सुभाष मोती, दो दो आज हमारे साथ सुभाष जुड़े हुए हैं। चलिए गाना होगा आपके लिए सुबी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम लीना हलकरी के नाम।

0: चलिए अगला गाना हमारा होगा फॉर आनिया, फॉर मेरी ग्रेस, संजू की तरफ से शर्मिली के लिए, सुनील, सुनीता, देवी, मीरा की तरफ से माहिन के लिए और फ्राक।
1: लिसनिंग आरएम फ्री रेडियो रेडियो रेडियो।
0: और ये गाना जाएगा सुनील की तरफ से उनकी बीवी के लिए, निशा वर्मा, बिंता समाद, जयमाला का बर्थडे है, पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना मामा दिवंती के लिए, दिवंती बोनकी के लिए, अमृता, अमिता, अर्मदा और इन सब के लिए गाना होगा अनिष्ठा की तरफ से।

सुहाना सफर सुहाना सफर दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। चलिए तो ये गाना जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया, थैंक यू शर्मिला बुधन लीना अलखरी के लिए गाना होगा, उन्होंने कहा प्लीज आप हमारे लिए गाना चलाएं लीना, दिस वन गोज फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर श्यामा के लिए गाना होगा, साथ में गाना होगा फॉर बेटा कौशिक, तीर्थ वैश नवी, पति सतीश, ये है मौत ब्लाउश से, और साथ में है अजय राजमन, लक्ष्म मसी गोबिन, सीला रागिनी, बेबे बंधु, रेशमा एंड संजय किनू, सुरेखा समाद, और साथ में गाना होगा आपके लिए सुरेखा लोफू और साथ में देविका किस्तामा। हेलो जी, कैसे हो आप? गाना होगा आपके लिए, थैंक यू सो मच हरमानो। और यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे हाई ट्रैवल आपको, वेलकम। किसी ने कहा बोले चूड़ियाँ, हमने चूड़ी नहीं पहनी है आज चूड़ी नहीं चलेगी, कोई बात नहीं, चूड़ी नहीं चलेगी तो पायल बजेगी। यहाँ पर गाना जाएगा फॉर हस्बैंड, फॉर माय पापा, फॉर माय मॉम, फॉर माय सिस्टर बेबी फिदू वीमी प्रिया विक विशाल एंड सभी फैमिली के लिए थैंक यू। दिल ने प्यार किया से कितना अच्छा गाना है, यस आई नो। एंड वी हैव पैम फ्रॉम ट्रिनिडैड, हेलो पैम, हाउ आर यू डूइंग, थैंक यू सो मच। समाद को भी अच्छा लगा, रागिनी जी को भी बहुत अच्छा लगा गाना, और शर्मिला बुधन को तो और भी अच्छा लगा। कहते हैं

0: क्या गाना है, वाह सलोनी दोहा जी हमारे साथ है नेक्स्ट उनकी पूरी फैमिली के लिए। वहीं पे नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर मिस्ड लव, क्या बात है, देविका आपके लिए भी। एंड यही गाना हम डेडिकेट करते हैं फॉर दुर्गा, चलो दुर्गा जी आपके लिए, और करिश्मा जहागी के लिए भी, दीप्ति जी थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स, और गाना वर्षा के लिए भी, अभी अभी जुड़ी है लगता है, तो चलिए सीता और गीता से मिला ही देते हैं।
1: RM3 Radio, Radio, Radio.
0: और ये गाना हमारी प्यारी सी डीवा गर्ल के लिए जो साथ दे रही है, और साकुन आपके नाम।

चलिए तो यहाँ पर जो हमारा अगला गाना आ रहा है वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा और खूबसूरत गीतों के इस प्यारे प्रोग्राम में यहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो आते हैं हमारे प्रोग्राम में और उनको हमारे ये गाने अच्छे लगते हैं। कभी कभी वो हमारे गाने सुनकर क्या होता है कि अपना दर्द अपना गम भूल जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट गाना भी हम किशोरदा की आवाज़ में ही लेकर आए हैं, ये गाना भी आपको बहुत बहुत बहुत पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा गाना है वो हमने अनुरोध फिल्म से लिया है और ये गाना हम सना के नाम डेडिकेट करेंगे। प्रेमिला भी हमारे साथ है और शिनाज के लिए उनके हस्बैंड का बर्थडे है तो उनके लिए गाना होगा और यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा फॉर बीनीता और साथ में गाना होगा हैप्पी बर्थडे टू माय कज़न चंदन, 6 अगस्त को यानी कि आज पैदा हुआ था, क्या बात है। और गाना जो होगा हम लेकर आए हैं आपके लिए सरोज को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हेलो ज्योति चमन कैसे हो, 37 इयर्स हो गया आज शादी को, क्या बात कर रहे हो परी। ओके सो आपकी बड़ी एनिवर्सरी है, आपका मैसेज ऊपर रह गया शायद स्क्रॉल करते करते या पता नहीं कहाँ खो गया। सो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे टू हस्बैंड, ये है शनाज की तरफ से। लैला मदारन थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सॉन्ग्स एंड और आपको हैप्पी हैप्पी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी परी और आपके हस्बैंड को भी।

0: सुहाना सफर
1: चलिए ये है सुहाना सफर अरमालिनी विश्राम इस समय हमारे साथ हैं आज खुशी हमारे साथ जुड़ी है उनका आज बर्थडे है तो हमारी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो चलिए यहाँ पर हम उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं इंदु रेशमा दीपक बिहारी अनुराधा ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबको हमारे गाने पसंद आ रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट गाना जो है डेडिकेट करते हैं सभी हमारे बर्थडे बॉयज़ और बर्थडे गर्ल्स के नाम

चलिए अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 2 बजे के समाचारों की ओर, फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। नेक्स्ट गाना कविता प्रेमिला बाई राम जी और साथ में धनुष बाबना, सानिया, कल्याणी सिंह और कोमल के नाम डेडिकेट करेंगे। और इतने सारे लोग हैं अमिताभ बच्चन के, इतने बड़े बड़े फैंस हैं, सब सुन रहे हैं, थैंक यू। हमारा प्रोग्राम जो है 2 बजे के बाद जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। संसद में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकता है। कौमी प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं। वे जोलिशों का स्थान लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं। पिछले मई महीने से कौमी प्रोग्रेसिव अपने तीन सांसदों पुल बेरांजे, जोआना बेरांजे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष का सबसे बड़ा दल हैं। चेतन बाबूलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्मगोकुल को इसकी औपचारिक मांग की है। अब संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। सांसद वेरोनिक लुगोविन के साथ ब्राजील के आत्सू द्वारा पूछताछ की जा रही है। वे आज करीब 9:30 बजे वहां पहुंची। रियूनियन और मॉरिशस के बीच 155.7 किलो गांजे की तस्करी की जांच के सिलसिले में उनके साथ पूछताछ की जा रही है, जिसके तहत उनके पति गुलशन गोविन और साथ में एक अन्य व्यक्ति रविंद्र चिमाजी को गिरफ्तार किया गया था। सांसद वेरोनिक लुगोविन की एक एसयूवी को जब्त करके उसका परीक्षण किया गया है। इसमें गांजे के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच के अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा दंपति की संपत्तियों पर भी जांच की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने 2 रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल दागे हैं और ये हमले कामयाब हुए हैं। वहां घना काला धुआं देखा गया है। इस बीच रूसी अधिकारियों ने करीब 90 ड्रोन्स गिराए हैं। मलबे के कारण 3 घरों में आग भी लग गई। और भारत के कई राज्यों में दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम में बदलाव का अनुमान है। कुछ दिनों की राहत के बाद अब मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 19 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। रामजतन रोड बेजुकाप में 82 साल की 82 ओल्ड की कुमारी तारामती कालकी प्रसाद कुमारी तारामती कालकी प्रसाद जो चंद्रावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे देवराज लक्ष्मणिया के मकान रामजतन रोड बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री गंगा प्रसाद जगधारी जो सुनील कैप्टन बातो के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे मोहा पेचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: RM3 Radio.

0: एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी कहीं, लेकिन ये मुलाकात अधूरी नहीं है। यहाँ विदिता का साथ है और आप लोग हमारे साथ सुन रहे हैं आपका अपना वही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर।
1: You're listening to RM3 Radio, Man.

0: अमन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सो सॉरी हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम थोड़ी देर से आए, लेकिन गाने जो हैं बिल्कुल सेट करके गए थे आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच अरे उत्तम जी के लिए। नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं और प्यार के साथ आपका वेलकम करते हैं रेडियो मनोरंजन RM3 पर, जहां पे चल रहा है प्रोग्राम सुहाना सफर।
1: RM3 रेडियो।
0: एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए हम लेकर आए हैं इंद्रजीत पम से, जो मुझे पता है आपको ज़रूर पसंद आएगा। सिमला गुरन सिंह के लिए ये गाना हम डेडिकेट करते हैं, जो इस समय हमारे टिकटॉक के साथ जुड़ी हुई हैं लाइव।

और चलिए गाना हम जेवीना के नाम डेडिकेट करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू गामी. आशा सुबह हमारे साथ उनके दोस्त सीता सिद्धयाल किरण और विकेश के लिए. और वहीं पे मौश हमारे साथ है. हेलो जी, कैसे हो जी?

0: भाई जादू की छपी तो हम सबको देने जा रहे हैं और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना उत्तम शोभा विमला सूप का आज बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे दिव्या सलमा विनय संजय विक्की और साथ में हमारे राज बैदेही बेडरम राचिया बिंता एंड दीप्ति इन सब के लिए होगा हमारे प्रोग्राम का अगला गाना स्पेशली मिस्टर स्टिंगमैन एंड वैनेसा के नाम
1: RM3 Radio.

चलिए अब हमारे जाने का समय हो गया है. थोड़ी देर में आज की चर्चा प्रोग्राम आप सुनेंगी और चलते चलते नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं अवीना के लिए जो इस समय इलान माठी में है, रेस्टोरेंट में है, खाना खा रही है. चलो बन अपेटिट टू यू. और इसी के साथ नेक्स्ट गाना हम नौशाद बुजामन के नाम डेडिकेट करेंगे और साथ में ये गाना होगा ब्यूटी आपके लिए. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. मिलते हैं अब कल 12 बजे. अपना ख्याल रखिएगा. बाय, टेक केयर.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मर्गरी हाइट्स से सभी कार्य तुरंत रोक देने की मांग की गई है। ये रियल एस्टेट कंपनी तमागा के ला तुरेल पहाड़ की ढलान पर अपने निर्माण कार्यों को विस्तार दे रही थी।

0: और जिला परिषद द्वारा उसे स्टॉप ऑर्डर दिया गया है। जिला परिषद के अनुसार इस ग्रुप के पास बिल्डिंग एंड यूज लैंड यूज परमिट नहीं है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा 117(1) के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है। संसद में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकता है। फ्रों मिलिटां प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं। वे जुलेश होंगा की जगह लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले एमएसएम के एकमात्र सांसद हैं। पिछले मई महीने से फ्रों मिलिटां प्रोग्रेसिव अपने तीन सांसदों पल बेहोंजे जुआना बेहोंजे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। चेतन बाबूलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोखुल को इसकी औपचारिक मांग की। अब संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। विदेश में भारत के कई राज्यों में दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम में बदलाव का अनुमान है। कुछ दिनों की राहत के बाद अब मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ तक कि उत्तरी इलाकों से लेकर दक्षिणी इलाकों तक सभी जगहों पर बारिश का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है जबकि 19 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉ रोड बोबोआ सेंपिया में 70 साल के 70 इयर्स ओल्ड के श्री गिरधारी भत्तू जो भाई गोलित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी देवी भत्तू के मकान रॉ रोड बोबोआ सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सेंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM3 Radio. आज की चर्चा।
2: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आज की चर्चा और मैं हूं अनुराधा। आप सबों का हार्दिक स्वागत हम कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में और बेशक आप ये जानना चाहेंगे कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। वैसे आज हम बात करेंगे न्यू प्राइस रेगुलेशंस, यूनिट प्राइसिंग और हाउ टू कंपेयर प्राइसेस। जी हाँ, यानी कि नए प्राइस रेगुलेशंस की क्या आपने कभी सोचा है कि 500 ग्राम और 750 ग्राम के दो पैकेटों में वास्तव में कौन सा सस्ता पड़ता है? अगर नहीं तो इसी से संबंधित इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे और आज हम ये भी जानेंगे कि यूनिट प्राइस क्या है, होता है। कई श्रोताओं ने फ़ोन किया, कई लोगों ने को अभी तक उतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो यूनिट प्राइसिंग ये क्या है और कैसे ये आपकी खरीदारी में पैसे बचा सकता है। तो इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए, प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं दो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स, श्रीमती जयश्री बसवन सुपोल जी हैं और श्री रणवीर सिंह मितू जी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का। और जैसे कि हम बोलिए, पहल हम एक हो जब जाने के आप लोगों से, तो श्रीमती जयश्री जी, ये जो नया प्राइस रेगुलेशन जो है वो काफ़ी दिन तक जब बोले कि ये लागू होकर रहा, तो ये कैसे काहे जरूरी पड़ल बा हमने के आम जनता खातिर के हमने खातिर
3: ये नया प्राइस रोमियो जूलियट से लागू होल बाटे। एगो नुवो कंसेप्ट है मॉरिशियन लोग के कंपेयर करके प्राइस जाने, जैसे बातें आगे तो सब प्राइस एक गो प्राइस रहल, जैसे बातें एगो प्रोजी जैसे एग्जाम्पल रहा जीरी बसमती राइस जो बैसा बसमती भात देखब तो सब 5-5 किलो के सासे में आवेला, तो सबके सब डिफरेंट ब्रांड के एगो प्राइस फिक्स रहल, फिक्स नहीं गवर्नमेंट पर फिक्स नहीं। जैसे एगो ब्रांड आ बातें तो सकेला 5 किलो के बोरी में ओके 300 रुपये हुई

0: voilà, 5 kilos que tu as 250. Aïssé, dès que tu as compé à la toile, dès que tu as 250, tu as dit, sans taper là après. Hi, standard, j'ai brûlé là, tu as un problème là-bas. Après qu'il a ça, 200 produits, le bâté, standard, bori, mené à ouïla, paquet mené à ouïla. J'ai essayé, bah, in a, j'ai essayé, dès que macaroni les bâtards, sub macaroni 500 grammes que paquet mené à ouïla. Kono bechala 200 grammes que paquet mais 300 grammes que paquet mais kono bechala 320 grammes, 318 grammes. T'as ab ego consommateur, qu'est-ce jani? Kono gestion que sans taper à ta kineke. Ici, le gouvernement a un concept, new concept, unit pricing, comme vous l'avez dit.
1: Oui, les gens qui savent que ce unit pricing est quoi. Ce question est venu. Les gens ne savent pas que ce n'est pas ce qu'il
0: unit pricing, comme le gouvernement a la loi de la loi, tous les produits qui ont un unit pricing, que ce soit un kilo, que ce soit litre par
1: kilo par gramme
0: et ça c'est-à-dire 500 grammes que adhar par fixé hol bati c'est-à-dire ce produit que paquet toi ce qui 300 grammes rahe ce qui 200 grammes rahe seulement 200 grammes que priwa dale ke chahi sange 500 grammes que haye disons hay macaroni wa 200 grammes que paquet mein avila seulement au 500 grammes que 500 grammes kitna pari
1: तो उन लोग के चाहे पूछताछ करें कि ना जन जन ग्राहक जब हुआ तो लिखल माने ना
0: नहीं नहीं उही यूनिट प्राइस एगो लालवा में बाते जब कमर्शियल लोग प्री अफिशे करे के चाहे ना तो संगे संगे हो पक चिजुआ के प्राइस डाले के प्लीज ओकर यूनिट प्राइस जैसे बोले सा 500 ग्राम पर है जब जन ग्राम के है अब जन
1: लीटर
0: जैसे तेल बाते ई सब चीज वन चाहे ना लीट परे डाले के एगो लीट एगो तेल के बुते सकी 5 लीटर रहे 4 लीटर रहे 2 लीटर रहे एकर प्री डालिया तब संगे संगे ओकर 1 लीटर के प्री वो डालिया संगे तब दुगो ब्रांड में सगबा कंपेयर करे कौन कौन ब्रांडवा जस्ती तुम आपको सस्ता मिला ताते वैल्यू फॉर मनी जैसे बोलिया सो
1: तो ये सब जन रिटेलर जन है जन सुपरमार्केट ये जरूरी है उन लोग के ये अफिशे करके दिखावे के
2: हाँ जैसे ये पासिंग बोला हमें कोलेग ये कौन सा है गो प्री है गो प्रोड्यूस के जन उकल स्टैंडर्ड में जमे था जैसे प्रक लीटर्स या बिया किलोग्राम और डाल जला प्रोग्राम में क्या है डाल जला आगे नेला है प्रोग्राम मोरिस में कैसे को निवो कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल है मोरिस हो लागू कर ला प्रीमियर जूलियट से तभी एक महीना होल बाद जब से है लालवा डालवा तो कहे डालवा ग्राहक लोग के वो ये देख के लग मैं प्रीवा में ट्रांसपेरेंस रही तो देखा हम सब कुछ किन्हों तो ऐसा हम फिर से आप लोग के राइट्स पे इनफॉरमेशन में आवे ला ट्रांसपेरेंस के प्री मिले ला तब लोग जाए ना सब कैसे खरीदारे किने की जब ये के आवे ला से वो प्री देखे ओके कौन पाए के ना सब कौन साइज मिला था जब कौन खामाज वे लीट में और कौन ब्रांड है जैसे कि दिखला एगो जैसे ला एक ब्रांड लगो तेल के ब्रांड एक लीटर में बिचाला तो प्री था डाल के लीटर उबिया किलो किलोग्राम में था डाल के तब जैसे एक तेल की ना एन लीटर के 120 रुपये है तो को यूनिट प्राइस डाला 120 रुपये लीटर तब वो दूसरा ब्रांड के लिए तेल वो दो लीटर में आवेला तो जैसे कि प्रोमी जन बोले 120 रुपये होला तो 120 रुपये डाली देखे मैं जन जन तेल है दो लीटर होला वो सकेला 225 हुई तो का प्री लीटर हुआ परी 112.50 हुई तो चाहे कंपेयर करें के कौन में तो के जस्ती मिला था दो लीटर में 112.50 मिला था एक लीटर में 120 पर लीटर मिला था तब कंपेयर कर बाहर दो ब्रांड ना के तब देख बा कि ब्रांड बीवा में दो लीटर में तो के जस्ती मिला था कि ब्रांड एवा के दिन एक लीटर बा
1: जस्ती
2: सस्ता लग मैं ओके तो के जस्ती मिला था से मैं कंपेयर कर बा तो के कितना निशुल्क कम थी प्री मिला था कुमार जी तो है कहते कहे मिनिस्टर सब सुविधा दे ले बा जब कंस्यूमर से कि कुमार जी देखे कुछ किने के चाहे ला और मैं एक एक को मौके पीछे नहीं चाहे कि ना देखे के बजट के हिसाब से कुछ किना तो ऐसा और लेकिन वैल्यू फॉर मनी मिला था कि नहीं उबिया जस्ती घामाज मिला था उबिया जस्ती लीट मिला था वो लोग जलन सा कंपेयर करे तब देखा जब है कहे जलाल बा जब आदमी से कंपेयर करे मिनिस्टर दिलवा प्री बा चाहे डिफरेंट रहे कि प्री जोन यूनिट प्राइस रहे ला सब सब सब आइटम पर लागू नहीं हुआ एगो वैटियन लालिस हम कि हमें आइटम में लागू होला तो हमें कहते हैं हम प्री बा और लोग देखे लंग सा अब एसेंशियल

0: commodities mais là c'est un qui est l'album et bas t'as aussi prévu de checker quand même ça t'as besoin de ça comparer hui d'écrire कोंची किनेस हाय किनेस या हो लुक बजट के हिसाब से और जन जन जन प्री रहेला जैसे वो थे ताला बोली जन जैसे कि एडमिट ला किने तो ओले के प्री सुपर मार्केट प्राइवेट एंड सो डिफरेंट डायमेंशन रहेला कि नॉर्मल प्राइसिंग से तो प्री वा में लिखा रहेला कहां बा ओकर रुपीस ओकर प्री पर लीटर स्पा स्पा प्रोड्यूस हिस पा 1 लीटर स्पा 250 ml के इतना होला तो नीचे को प्री लीटर्स में काल है आदमी के साथ कंपेयर करें ग्राहक लोग के कौन कौन मार्क के बंदा कौन कौन डिफरेंस बा तो भाई खाते आदमी लोग के मैं बोला था कि ग्राहक लोग के चैनल लोग के कंपेयर करें कि कौन जाके हाल ही ने किने के लेकिन मैं तो कंपेयर करा कौन चीज तो के सस्ता मिला था और कौन तो के ज्यादा मुनाफा बा
1: तब ग्राहक लोग के यही मांग हमने कर अब जाके उन लोग के चाहे निमन से पढ़े के देखे के परख करके तब अपन खरीदारी करेंगे
2: हमेशा बोली जा इम्पल्स बाइंग नहीं करे हाँ। जाके लेके आए के तब अब घरे तक फायदा में नहीं हुआ
1: तो अभी पहला मतलब जुलाई से ही लागू
2: हाँ जुलाई से ही लागू
1: तो अभी तो हमने उसमें है सर हाँ। तो अभी तो लोग दोनों ऑफिसर्स जैसे रोज जाना के काम में होला जाला थी इंस्पेक्शन करी तो कौन सी कैसे स्टैटिस्टिक मिला अभी ले
2: नहीं जो जाते
1: अभी तो जल्दी हम नहीं जानी हाँ। ला बहुत जल्दी
2: निगेटिव फीडबैक नहीं मिला था ग्राहक लोग कले कले समझा थो मन सर तो कन्फ्यूजन नहीं करत हो ऐसे जैसे लिखा बा जानत हो पर एगो निगेटिव फीडबैक अभी ले नहीं मिला बा सिर्फ अभी थोड़ा बने बा बोले के हाई नया नया प्राइस हुआ के लैपाक का हुई और ट्रेड है वो लोग देखा था ऐसा जैसे लालवा में बात है वो लोगों प्रीवा और से आफिशे करत हो सुपर मौसम में चेक वो सब हो गल बात है चारों बगल है लागू हो बा है प्रीवा तो देख कले कले देख अब सा का होई अब
1: कैसे होई
2: कैसे
1: एवोल्यूशन होई परंतु कोनो थीने बा नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला
2: ना हमी के सेक्शन कंप्लीट में अभी ले नेगेटिव फीडबैक नहीं आल बाकी
0: एगो नुगो कॉन्सेप्ट हो गवर और मिलो के लेटर ही समझे के कौन चीज का ही आलबा तो जैसे एगो कॉन्सेप्ट आता हाल ही से नहीं समझा था लेटर मिलेला एजुकेशन का हिला सा जैसा सा कोमेशन लगे बोलीला सा कुछ है कैसे छा करे के तब प्रोमेर फिर कोमेशन क्या पोते बस ऊ प्रो डाली तब कौन से मारते जाए आप ही जाए कि नहीं तब प्रोमेर सेंसिबिलाइजेशन कहीं सा कौन सा ट्रेड लो के कोमेशन के कैसे प्री छा डाले के काहे छा डाले के जब मैं कौन से मारते क्योंकि फैसिलिटी बिल आइडेंटिफाई करे के कौन प्री बा और कौन यूनिफाइजिंग कुछ है
1: अच्छा ये जो नया रेगुलेशन डला गलबा ये सब प्रोड्यूस सब सामान पर लागू बा कि कोनो एक्सेप्शन बा कुछ एक्सेप्शन
2: ये सब प्रीवन एक्सेप्शन है एसेशन एसेंशियल कमोडिटी जैसे बोली ला सर ये सब में लागू हो बाते जैसे बाते चाक जिरी देलवील तेल ये सब चीज में दूध मिल्क पाउडर ये सब चीज में लागू हो बाते एगो लालिस बाते लालवा में वेबसाइट वो पर मिली ये सब जैसे बाते दाल पल्सल बोली रहा सर दाल सब जो बेसिक कमोडिटी है इसेंशियल हबी जैसे सकब सा बोले एगो फेज वन है फेज वन इसेंशियल कमोडिटी में बा और ये
1: मतलब फेज दो भी सकेला हो
2: सकेला हो ये सब
1: सरकार पर निर्भर
2: सरकार फीडबैक
1: जो मिली
0: जो रेगुलेशन हो मैं बेहतर प्रोजी बा जैसे बा कान वेजिटेबल बा सीरियल बा एडिबल ऑयल बा और फ्रोजन पैक वेजिटेबल बा और आदि सामान बा से सूप पाउडर डेंटिफ्रिस सब बा चा सब बा और जैसे बोला ग्रेसिक और जीरी बा और लिक्विड मिल्क और इन्फेंट मिल्क और पाउडर मिल्क सब बा तो हर सब बन फिर बेसिक कमोडिटी है दर्मी की हर उसके हर हर समय जिस बोले हर महीना जैसी सेवियर ला कुछ में तो हाउ में गूगल में हो यूनिट प्राइसिंग डालक जहाँ में हर एक बेसिक नीड है तो लोग कंपन हो कुछ किनत हो का है कि इसकी वो लोग के मिला था जो इस बोल जा जो वाले जो लॉज पे करते हैं ओके वाले प्रोजा मिला था कि नहीं एक वो कॉन्सेप्ट आते हैं लेता हूँ आदमी कंपन हो के तब जैसे जैसे लेता हूँ जाए तो कंपन का ही दलाल बा तब उसका लाभ उठा सके
1: अच्छा तो कोनो मजा जो नो रिटेलर जो है ये जो रेगुलेशन नया प्राइस उसका पालन नहीं करत कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के कौन कौन एक्शन ले लाई में
2: जे prix affiché.

0: करता थे नूवो रेगलेमों के आधार पर जैसे यूनिट पास चला डाले के नहीं डर लग पाते एगो ओफेंस हुआ तो ई ओफेंस में एगो फिक्स पेनाल्टी है 5,000 रुपया के
1: नहीं मैं लालवा कौन कानून कौन सी बोली हुई कितना चाहे भी एक
2: जब लालवा आगे से बाद जब फ्री ने रही को लॉजिक में तब लामान है लामान है आगे के फ्री छा डाल के रुपीज छा लगे रुपीज और छा लोग मोटा डाल के कितना के पे कर तो पीछे का छा वाद डाल के ऐसे रहा आगे लालवा जो नहीं होता तो लामान होता हल 2,000 हल तब लालवा ने समझ हुआ 2,500 मी में 5,000 हो गल बा 5,000 हो गल बा तब नुवो लालवा जो जूलियत में आलबा प्राइस लेबल रेगुलेशन 2026 में उमें एगो सेतन प्रोजू बा सब प्रिपारे नौ जन वैतन प्रोजू बोल ली उकर में चाहेला प्रियुवा में चाहेला लोग के वाद डाल के जो वाद इंक्लूसिवा निखाल के वह वाद नील वाद जीरो रह के अब हम जैसे बचा ऐसा एसेंशियल कमोडिटी जैसे जैसे जहाँ की गवर्नमेंट डले बा सब्सिडी डल बा और प्रोजू में तब जैसे एस पी डाला एस पी वाला सब्सिडाइज प्रोजेक्ट प्लस वाला एम ओ बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस हाउ सब चाहना फिगर कर जन लॉजिक वन में जन बोली सब प्लीज जन लॉजिक एम ओ पी है कैसे बोलते हैं सब्सिडाइज प्रोडक्ट बोला जाए जैसे जैसे बा कौन मूतों बा कौन बीफ बा कांचूना बा माकाउनी सब बा हमें वे ओ पी के जिस ओ पी कह चुकी सब्सिडी डाला गवर्नमेंट तब ग्राहक के चाहना जाने के कुछ बोल जरा एम ओ पी हाउल हा बोल जाए कुछ एम ओ पी बोल जरा मैक्सिमम रिटेल पास कुछ बोला मैक्सिमम रिटेल पास तब एगो लालवा मिला गए एगो चाहे मौका बोला मौका रेगुलेशन उकर में जब एगो एयरपोर्ट आते हैं जो लालिस में बस पा माकाहुनी फुमास पा पल्स सब सब घैसे एयरपोर्ट करेला तब बीचे खातिन तो जितना कुल कू है एयरपोर्ट के जितना एयरपोर्ट के लापिस पे कर लेबा तो भाव कुआ जो एयरपोर्ट के मिनिस्टर को लालिस सुमित करेला एगो यूनिट भाव मिला के फायर फिक्सिंग वो कुछ करेला वो कैलकुलेट करेला प्रॉफिट प्रॉफिट बोला जला एगो मर्ज दे प्रॉफिट देवेला ओके कितना चला बेचे के हमारे मैक्सिमम अगर नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस ओका से ज़्यादा नेस की बिचाई तब हवे पोफा तब गूगल में कुछ कर लेवा जो प्रियवा में जो कमोजिटिवा में मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहल तब हवा में सब्सिडी डाले लगा कोमल तब बोला सब्सिडी एस पी प्लस एम ओ पी चला तब एगो फ्री बात जो सब्सिडी बा अनुमय जो एगो में जो एम ओ पी है बाद में सब्सिडी नहीं पा चला लोग के आदमी ग्राहक से आइडेंटिफाई करके कौन कौन कौन दफे हाल अच्छा मालूम कंपन कुछ बोला एम ओ पी हर हर को बोला सब एम ओ पी कुछ है एगो कॉन्सेप्ट टेक्निक है सब सिंपल लैंग्वेज जैसे बोला था एगो फ्री है जो एम्पुटेशन होला मिनिचर कैलकुलेट के ला फ्री हवाई फ्री बच्चा है बेचे के ग्राहक लोग समझे ओकर से ज्यादा नहीं चला बेचे के तो कौन था मॉन्स्टर जला सैकुलूपी का कमर्शियल ओकर अमान जब नया जाना जैसा कोई फ्री बेचा ला एगो सीट बा मिनिस्टर के पी एफ यू गव एम ई वो मैं हो जाए सर ग्राहक लोग संगे मैं चेक करे कौन कौन फ्री बेचा था फ्रीवा के कॉलोन में लिखा हुआ कब से इफेक्टिव बा कब फ्रीवा लागू होल बा हाउस हुआ चला फ्रीवा बेचे के जब जाए को प्लस में हवा का राइट इन्फॉर्मेशन एम पे होता था तो जब एक किने को जाफे था तो हुआ जाए तो एक बार फ्रीवा नहीं अच्छा बा ऊपर पोता से छे करता है फ्रीवा नहीं अच्छा
1: बा ई में कैसे ओ जिन ग्राहक कौन जी करे रहा हूं कंप्लेंट कर शिकायत
2: टेलीफोन करे 185 में तो शिकायत करे जे एगो फ्री भाई बा तो प्रॉब्लम बा तो बोल ले कौन प्रॉब्लम होल बा तो बोली कहाँ पर लिखा तो हमने के दे दे सकी उपाय नामू दे कंप्लेट कही था सकी एनोनिम वो करे जब कर जब कही था कंप्लेट हुआ तो मिनिस्टर हमने जब सा वेरीफाई करे जो प्लास कंप्लेट हो बा देखा सा जी खब सा लालवा के
1: हॉल
2: तब को चालान का था इसे जब कौन था उसने जब सा तब दे अपसा था हुई जब जब जब अदमिया कहा को जो उसका नाम दे तो के फीडबैक दे अपसा कौन एक्शन ले ली सा जब गई लिसा कॉन्टावेंशन ले लिसा या गई लिसा फ्रीवा नहीं अच्छा हालत दे लिसा वो या जब एनोनिम रही था तब फीडबैक नहीं सकता दे ओके जब नहीं जाने को एक्शन लेना ऐसा तो कहते हैं ग्राहक लोग के बोही लास्ता कि सौ कान लास्ता कि टेलीफोन के नहीं बट को कंप्लेंट हुई कोनो प्रॉब्लम हो तो फ्री में नहीं बट को ना फिर मैं
1: उन लोग के हक है राइट है बिना बेझिझक के उन लोग सकेला
0: कंप्लेंट करे और कंप्लेंट करे लंग सा उन लोगों के फायदा नहीं
1: जिसर
0: हाँ जिसर कंसोमाते वो के फायदा होला जैसे आप तो मंगा प्रिवा पे ये कर दिया था जो बाद में आवा था वो लोगों मंगावा पे करी जब कोई नहीं बोली तो अनुमानी वा कोई से नहीं हुई
1: हाँ.
0: जब सिग्नाले करे लग सा तो तब देख बा अनुमानी वा कोई से होल तब प्रिवा उसका सही प्री पे आलवाती
1: इस चर्चा को हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं तो इसके बाद आज के चर्चा प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे.

हमारे साथ स्टूडियो में श्रीमती जयश्री सुपोल है और श्री रणवीर सिंह मिट्टू जी है जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स है। और हमने क्या अपनी नई चर्चा जो जैसे हमने नई प्राइस

0: रेगुलेशन तथा यूनिट प्राइसिंग और जो कीमत दुकान में रखकर कैसे उसकी तुलना कर जाला। तो हमने प्रोडक्ट्स पर जस्ती बतियाई ली जा सामान पर तो जो जो हुई रहेगा जब फल की बात होला जो हमने जस्ती उसके निर्यात करी ला तो ये पर कौन चीज अकबा बोले
1: Fri, jen fri bate fri lokal lok, lok ke priwa unit price dale langsa, ime koi problem ne bate. Jen fri importe, jese bolia sa, jese bate pommes, oranges, sop, hai sa priwa chay la, morson, jab pri dale la, te okor, 500 gram por chay la dale ke. Ta jya 500 gram pommes ketna koute hoi. Ta, ta sop fri importe, 500 gram por chay la dale ke. Aurui tab jaise raisin bate 500 gram ke priwa dal deva ta ego consommate de ki 250 gram lays pa ek kilo le ta ujani 500 gram par priwa ba utna ta okay kitna pari
0: ta ekad go jin shota hoen ja ekad go lok grahak lok soche la ja pucha tha wan sa jaisi ki jahan packet jaisi bara ha ou such much jada sasta ho matlab quantity jaise aap bola spa compare karike o me kilo auri liter ki cheez agar jaisi le bata image jaisi fayda ulo ke e kaise ulo ke sakela explique karike e bat
1: jaise bate ego same produit jaise bate jaise de go
0: matlab packaging
1: jiri bate kabo jiri 1 kilo même il est là ti paquet Ori ena 2 kilo ke paquet mein bate ori 5 kilo ke paquet mein bate e ekke go branwa ke jab unit price par dekhba ta dekhba ta 5 kilo wa mein jasti fayda bate 2 kilo mein chora jada fayda ori 1 kilo wa jab kinat ho
0: alag packaging mein rahela
1: alag packaging same brand ke jab compare karba ta dekhba ta kabo dekhila sab bara sase mein bara bori mein jasti fayda hola
0: jasti fayda ho
1: yahi concept pe tab goenmal bate hai unit pricing ja mein grahak log compare kare tab dekh saki jane कौन लोजमो में कि नहीं तो ओके जस्ती फायदा होता थे
2: जैसे सुपर मौसम में रहना सा तो फ्री भी चला नो फ्री भी चला डिटाइल में से किलो 500 ग्राम कितना लीबर तो पीसे करके तो फ्री दाई ला और कौन आवला पैकेज में और पैकेज में आवला जैसे पोम के डिफरेंट क्वालिटी बा रोज बार वे बा तो देख बा तो बेचाला 5 ग्राम बेचाला पन पोम से हाजिर करा तो पीसे करा तब एगो आवला पैकेज में जैसे वाला 6-7 गो रहला ओकर फ्री सकेला कंपेयर के चलके 500 ग्राम में कितना मिलता जब पाकिवा में तो कितना मिला था तो भाई के आवला यूनिट प्राइसिंग कौन पाई कर कहाँ तो कि जस्ती मिला था वो जो पाक कर दिल भागे से भैया जो लेबा में तब जन्म कौन फ्री मिला था कौन सा कौन पाई करे कहाँ तो कि जस्ती फायदा मिला था जैसे बोला कि चाव के कोई एग्जाम ले ला जैसे एक ब्रांड बा 5 किलो के बेचाता 450 रुपये तो कोई यूनिट प्राइसिंग हुई 90 रुपये किलो 5 किलो के बेचाता तो 90 रुपये किलो हो जाए वो तो 450 बेचाता 5 किलो तब ओकर किलो पर आए एक को किलो पर 90 रुपये तब एक दूसरा ब्रांड के साथ वही ब्रांड के जब 10 किलो के बोरी ले बस चावल के तो वो बेचाला 850 तब जब कैलकुलेट अब ओकर प्री किलो पर तो आवेला 85 रुपये तब देख पा 5 रुपये डिफरेंस जब जब 5 किलो वाला बोरी ले ली ओके 90 पता यूनिट प्राइसिंग किलो जब 10 किलो ले ली तो 85 किलो पड़ता तो यह कुछ डिफरेंस बा जब फायदा जैसी बात जब 10 किलो किलो अब तो 85 भी मिला था तो वो चाह रहे ग्राहक जैसे बोला उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना वो लोग के देखे चाह कौन चीज लोग के ज्यादा चाहे ला हो लिया बा 5 किलो या 10 किलो हर एक प्री है कंपैरेटिव है वो लोग ने भी चाहे ला हो लेके वो चाह कंपेयर कौन लोग के जैसे वो या जे एगो आदमी देखता ग्राहक देखता दे 10 किलो में ओके गो फायदा बस मो के 10 किलो नहीं बिजा 5 किलो बिजा तो इधर के 5 किलो हां और लोग के हिसाब के और लोग के प्रेफरेंस के हिसाब से और बजट ऑफ कोर्स के हिसाब बजट के हिसाब से और लोग के चाहे कुछ कुछ किने के चाहे ना हर से बता यूनिट प्राइसिंग है कंपेयर करके ब्रांड के डिफरेंस और वैल्यू फॉर मनी कुछ मिला था सब ग्राहक पर निर्भर है लोग के ड्रॉ है राइट टू चूज लोग सुहाजरी कर इन्फॉर्मेशन मिला था यूनिट प्राइसिंग के सुहाजरी कर कुछ है कि नहीं के लोग जैसी लाभ हुई
0: और अगर मतलब एक कंज्यूमर जो है मतलब ग्राहक अपन शॉपिंग कर रहा था तो कौन प्रैक्टिकल टिप्स आप लोग देबा
1: ग्राहक लोग के चाहे ला

0: premières affaires bitsé de kéké. Open hisap c'est khareedari karo. Aur deuxième jaise nouveau pricing unit pricing albaté prix one compare karo. Compare karo brand par kilo par lead par kitna fayda hota aapke. अब कबोलिया सर हाँ बड़ा लोजमाओं में जस्ती मिले रहते जस्ती फ़ायदा हो सिर्फ देखे कि चाहे ना है पहुँचुआ कब एक्सपीरी हुई अब नहीं सकब एगो 10 किलो के 4 ले ले सिर्फ नहीं सकब उतना कंसूमे करे अब मुआजी होता इस सब चीज़ इस सब चीज़ चाहे ना ध्यान में रख के ले के जैसे खान पान बातें इस सब में एगो एक्सपायरी डेट बातें जब एक्सपायरी डेट बातें तो नहीं सकब ले के ज़्यादा दिन रखे उबे निमन से नहीं रख ला हुआ जैसे सुपर मार्शे में बा एगो एनवायरनमेंट में रखल बाटी फ्रिजर में बा एगो कंट्रोल एनवायरनमेंट में बाटी अब घरे हो अनबत पागे हो चाहे ना रखे के नहीं तो फौजुआ गाते हो जाए तब फायदा नहीं हो किनला संस्था हाँ सिलम घरे आल तो निमन से नहीं रख ला तो एगो फायदा नहीं हो इस सब चीजवन चाहे ध्यान में रख के खरीदारी करेंगे
1: और आगे चल के जन कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से आप लोग हो जा तब कौन कौन अवेयरनेस कैसे मतलब लोगों के आप लोग जागरूक करा रहे हैं कि कौन कौन इनिशिएटिव आप लोग
2: मौसम जब लालवा हो बता है लालवा प्राइसिंग बताए मौसम छाला कुमेसों के खरीदे लोग के सेंसिटाइज करे कहे नुवो लालवा अलबा उन लोग के छा कैसे फ्री छा डाले के तब उसका दिन गहली साहब ने बोले कैसे फ्री छा डाले के कुछ सा फिगर हो गया बोले कितना लेता हूँ लगा अडाप्टे हुई के तब भाई थ्रीडर के कुछ बोले कि फ्री वन डाल के सब जैसे एला सा बोला सा फ्री छा डाले के फ्री नहीं तो कॉन्ट्रावर्स रही बस कि जब जाए ना सा थ्रीडर उन को कहा दो तीन कहे थे फ्री छा डाल के ये ओपी बा एस पी बा ओपी बा एम ओपी बा ओपी बा नॉर्मल बा तो लोग के हर हर हर हर सब फ्री वन जो बहुत है फ्री जो मैं सब्सिड बा और जो एम ओपी वो फ्री वा वो पारे ही नहीं रहेगा हर हमेशा सहोजे खुला मोटे होला डिसान होला तो लोग के हिसाब से कुछ एडजस्ट करेंगे तब वे कहते हैं बोला सा थ्री डर के वेरीफाई करे कि सीट बा जैसे तारे बोली पी एफ यू गव एम यू पॉइंट ओ मैं वो लोग वेरीफाई करा अब जो जो सप्लायर वाला उन लोग पहुँचे और छोड़े तब देखिए ना लोग प्रॉफिट का आखिर कर बाग को बोला सा कितना सारा बेचे के तो उतने पर बेचे लग सर जैसे एगो थ्री डर एगो फौजी किन लग हबी तब एक महीना हो गल फौजुआ नहीं बेचाल बा तो फ्रीवा अंतर एवोल्यू हो बा सकेला वो प्रोड्यूअर में 10 रुपये में किन लीबा चल 11 रुपये बेचे के तब फ्री हुआ मोटे हुआ 12 रुपये उगल बा तब ओकर ओकर जब किन लिया तो 11 रुपये डाल था ओके चाहला 12 रुपये डाला के उबिया तो बेचे होगा 10 रुपये उगल बा तो लोग चाहे 10 रुपये करके मोटे निशान होला लाभ बोला विन विन सिचुएशन ऐसे बोला सर तब वो लोग के हाई होला करे थ्री अब जैसे जैसे हाई प्रोग्रामा कर जैसा ग्राहक लोग के सेंसिटाइज हो गए जैसे हाई प्रोग्रामा के दौरान अवेयरनेस कर जैसा जैसे जैसे बोला जैसा हमने जाना सा सगलो सगलो बचाए सोशल वर्कर सेंटर सगलो जाए सा तो चुजु है सब चीज आ बोले के लिए आदमी लोग संगे दीपक कौन हमने के पब्लिक है उनके तो अगर खुप जब जब ग्राहक जब बुजुर्ग बोला भोचुए मचा सा खोल मचा सा इस पी कही सा कुमार के लोग के टेंशन जीवसी कुंभ हो तो दुश्मन दुश्मन को आज कौन हलंग सर तो वो चीज बताए हाई हाई लालवा फिर कालबा तो जीवन के लोग के अपनाए कि लालवा तो इन लेता हुए लेता लेता सब अभी लोग पागे नहीं है ना तो लोग किसान कौन है कि धीरे आदमी एनालिस कहला कहे दलाल बा सब आदमी अपन ओपिनियन फॉर्म में करेला कहे गोल में अनले बा गोल में कहा अनले बा अनले बा मैं परचेसिंग पावर जो आगे आदमी ने से चल किने उप में परचेसिंग पावर कि मैं मेंटेन कर लेबा और वो लोग के एक वजह लोग के कुछ और लिविंग हुआ इजी इजी कर लेबा सर्टेन फौजी में बताइए तो हम कि छाना बोले कि फ्री कुछ है फ्री हम बोले फ्री कुछ है फ्री बोले जरा तीन कहते फ्री बा एगो फ्री फिक्स बा एगो फ्री जैसे बोल दी सा सब्सिडाइज एम ओ पी कंट्रोल हला उतार चढ़ाव इम्पोर्टेशन से आर गो फ्री बोला लिबरल जब बस फिर मैं जब बता ठीक है फ्री रही फ्री बा पागे नहीं रही ग्राहक लोग के चाहना कंफर्म हो कि फिर प्राइसिंग कैसे होला जैसे हमने स्पेसिफिक में बता दी सा एस पी और एम ओ पी के सजा सब्सिडाइज प्रोडक्ट और एम ओ पी पर
1: तो भाई जी जब उन लोग के सामने जब मतलब जिन जैसे को सेंटर में जा कर के उन लोग के बोला तो उन लोग कैसे कौन रिएक्शन बा उन लोग के कैसे सिपा उन्हें बोले रंजा कि ये महंगा के जमाना है हमने के उतना पैसा
2: नहीं जैसे जरा सा बचाए था अफ्रीका गलती सा तब जाए ना जब सेंसिटाइज किया था जिस फ्री पर नहीं माना और लालवा भी हमने के मिनिस्टर में सब लालवा ऑनग्लोबे के इलासा तब आदमी लोग हमने के पूछे ला फ्री का है मोटू था तो हमने एस पी ए का इलासा

0: मोहरी से वो पेई हा जैसे हमने पोताशो पर निर्भर किया सा सब चीज हमने की देव से होला अब जाला देव पॉलिटिक और ये सिचुएशन फिनेंस ऐसा पारी नहीं है ना मोटे हुए ला तब वो सब प्रिवा कॉन्सुमेटिव पर जा अब जब बर्डन हुआ जाला कॉन्सुमेटिव पर तो स्पीक ला सा गाहर लोगे और जो मेरा स्पीक कही ला सा कैसी होला कैसे तब जब sensitization kan satu tu kau kau tidak satu tapi admiro awal tu gua ni mana feedback dia apa kau pun yang langsa
1: kau no hyper ni
0: lah sebab no tapi jangan rahila gua tu hamil control mana kau speaker sa coach hola sekiranya kau problem boi ukal opini hana tapi hamil lalu aki sabse kau kira sa boi lah sa lalu hai boi lah lalu aise bata tapi ya satu kau pun lah tapi jangan lah sebab ni parin ya sebab kau reaksi parin ni kari tapi pasal kau main isi kau lah sa admiro ke ane kau reason mama
2: ढेर ब्रांड बाते तो आप अपन हिसाब से अपन बजट पैसा देख के देखबा कौन ब्रांड अब सब चीज के ढेर ब्रांड बाते कोनो ब्रांड जस्ती सस्ता है कोनो ब्रांड जस्ती महंगा है इब्रान ब्रांड के पाछे ने भग्य सब भोजन तो निमनवे बातें आप अपन हिसाब से किन के चक के देखबा अच्छा बातें तो कोचिंग करिय ऐसे बोलीला स सेंसिटाइजेशन करीला स तो आदमी लग समझेला आगे देखबा तो कबो इन भोजू के दुगो दुए गो ब्रांड रहल तो ढेर सुहाने रहल ग्राहक लोग के सुहाने रहल तो अब तो जस्ट ढेर ब्रांड बातें जस्ती शुआ बातें जस्ती इंफॉर्मेशन देवत है सर जस्ती सेंसिटाइजेशन कर सर खरीदारी बखत इस सब चीज के ध्यान करके चाहें
0: जैसे वो कौन से बातें हर उदाफे की नहीं चला तो सिकोलॉजी है वहाँ जाए भोजी किलने बाहर में सा ब्रांड लॉयल से बोला जला उसे भी के ला हवे अब जब हवे भोज महंगा अगर जस्ती महंगा तो अल्टरनेटिव मिला तो हवे भोजवा के और अल्टरनेटिव तो कुछ पहुँच कर बोला हाई से भी कर ला हाई दूसरा ने सही करी बोला हाँ वो से भी कर ला कहा है हाँ का नहीं अच्छा रही कि नहीं हाँ बोली हाई भोजवा इतना पे करते हुआ पे कर उतना तब नहीं अच्छा लगी तब पुणे में पैसा भेजने कर ला अभी तो हमारे ब्रांड वास्ते स्टिक रही ला हवाई ब्रांड वास्ते रही अच्छा हवाई कॉस्ट माथे के बोई ला सा दूसरा चीज छाजे कर ला देखा बस की जैसे अच्छा कोर्स ऑफ लिविंग में होते होता तो लोग के चाह डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के इसे ही करके कि नहीं जनवा कर सके ला हाउ बहना कुछ रह गया तो जैसे कम से पैसा मिला था तो ऐसे खाती मिला सा सबको उसे माते है कि कोई सेगमेंट पारी नहीं है सबको के डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस है जो कुछ ब्रांड लॉयल से बोले ना वो लोग एक ही ब्रांड के जैसे कपड़ा महंगा हो नहीं महंगा हो उखावे की जैन सा कोनो के बजट यानी कमती है तो वो लोग के छाना स्विच करके दूसरा ब्रांड के मैम खोजिए कैसे दूध बा डिफरेंट ब्रांड बा देखा प्रीवा बा यूनिट प्राइसिंग बा सब कहते दूध में देखा कुल में यूनिट प्राइस में जस्ती मिला था हवे खाते मिला सा आई लेता लो भी आदमी लोग के सुपर मार्केट जाके कंपेयर करके
1: अच्छा तो सुपर मार्केट में ये सब लागू लाभ कोनो कोनो ताबाजी बा कोनो छोटा छोटा बुटीक बा
2: ओ लोगों के चाहेला है नुवो प्राइस हुआ ओ लोगों के हाँ जब जाते हैं सा तेरे पर बोला था इस लाबुचिक लोग के कैसे नी प्राइस डाले के है सब प्रोड्यूसर पर नेता एको कंट्रावेंशन है और ये हम जब हम और हमारे कोलेग लोग जब गल है सा तेरे पर देखा था इसा इंस्पेक्शन करते हैं सा तो चिलाबुचिक वो डाला था उनसा प्रियोन लालवा के आधार पर
1: अबाइड कर रहे हैं उनसा सब और ये चाहे साफ दिखे के ना कैसे के सामने रखे
2: अब ग्राहकों के ढेर फैसिलिटी हो गल बा कंप्लेंट करे के अब टेलीफोन बाते स्मार्टफोन हाली हाली से वीडियो करके विदा कर दे विलंग फोटो लेके करके विदा कर दे विलंग तब वो लोग जाने रंग सा
1: इस स्थिति में मतलब जो एक तुरंत बताइले सा तू लोग के ऑफिसर जो जान गए लंचा तो तुरंत अपन ठीक करे ला
2: नहीं आज एक कंप्लेंट करो तो तुरंत कबो नहीं पर नहीं सक जाए पस की ऑफिशियल लोग देजा तेरे पर चल रहा उनसा देजा
1: चाहे जाने के कौन कौन जगह तब
2: हाँ कबो इमरजेंसी में जा रंग से जैसे कैपिट में ऑफिशियल देजा बातें एक कंप्लेंट मिलल तो सब
1: बोले के ऑफिशियल हाँ, लोग जाए देखे
2: नहीं तो जब कंप्लेंट हो जाए तो दूसरा दिन कंप्लेंट वहाँ के आस

0: इस कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं और जैसे ऐसा ने प्रश्न इन मिनिस्टर जिन कौन कौन कदम लेवेला जनता के जनावी खातिर की सोच समझ के चाहेला मतलब एक एगो व्यक्ति एगो खरीदारी चाहे करेगी एगो खरीदारी करेंगे कौन ऐसा सोच समझ कर मतलब ऐसे सलाह देवेला
1: मिनिस्टर हमेशा हम ही बोली रास जब जाए सेंसिटाइजेशन सब करे तो बोली रास जब खरीदारी करब तर फ्री देखेगी बीच से सब ओके है सब चिप देखेगा हो गल अब जब जाएगा रियो में गईला जैसे एगो फौजी ले फौजुआ जब ले लेला तो निमन से पहरिया ऊपर का लिखल बाते तब हो फौजुआ के फ्रीवा देखिए जे सब पारे बाते कबो कोनो ग्राहक जैसी जन पढ़े लिखे जाने ला तो देखे लग सा बॉकोड कंपेयर करे लग सा जब बॉकोड व फौजुआ पर के बॉकोड और ये फ्रीवा के बॉकोड पारे है तो जनब हाँ है ये फौजी के है फ्री है कबो देखिला सा ग्राहक लोग का करे लग सा एगो फौजी ले लग सा एगो फ्री देख लग सा होगा सिर्म नहीं देख लग सा सिपा है ये फौजुआ के फ्री है लेके चल गए लग सा जैसे एगो फौजी ले लग सा जिस रूपी लिखल बा हो जा सिर्म है फौजुआ नहीं है आ कोते रहल फौजुआ नहीं देख लग सा फ्री आ कोते हुआ हाउ ले ले लग सा अब गए लग सा लाकेश पर पे होल तब होता था 20 रुपी तो लोग समझा नहीं लाकेशवा वो लोग के चोरी कर लग 10 रुपया तो कंप्लेन करने लग सा तब जब हम ही जाए ला सा लोग के रेसी सब देखी ला सा तो देख ला सा कोरस्पॉन्डिंग जैसे वैसे सा फौजी नहीं ले लग
0: कबो कबो जब ग्राहक लोग कंप्लेंट शिकायत दर्ज करे लग जा ये कबो

0: बाकी जन शिकायत दर्ज करन जाए अब जाके आप लोग इंस्पेक्शन के समय में जब देख लग उमें मतलब ग्राहक वा मतलब ठीक नहीं देख लग
1: नहीं जैसे से बोलिया सा
0: शिकायत दर्ज कर ले वाले लेकिन जब आप लोग जाके अपन चेके करे के तब देखना कि नहीं जो ग्राहक वा बोल लग वो ठीक नहीं है
1: हाँ सकेला हाँ

0: Eu conta mo sha ha sa ke sa fix penalty dia. Ap kuno isbata kuno glahak sakila haule wa. Sakila sab admi ume sa. Ire ho la sab admi sa kam gar hak sane gar hak ne zata. Sakila hali hali me go kar de leba. Tab gal ba ho tel kaba priwa ba ri ne dan ne da. O que se quer fazer que nem lei produziva ou bem lei produziva. Tab pa fa ho la ek de ban complaint ho la. Ya se o exemplo do tai. Gali go plasme bota pri ne ba ha ya pri ne ba. तब हमने गए सा प्लास्टर में कहाँ बल कंप्लेंट कर ले बा लेकिन जब गए सा देख सा प्रिवा बा समा हो ले हुआ जब ऊ को हल प्रिन्यर हाल तो हमने फैक्स के दौरान काम कर सा फैक्स जब सा एविडेंस में इतना कौन था वो सिर्फ सा अब कैसे हुई जब प्री नहीं बा तब जब इसलिए ना इंप्लीमेंट कर लेके जब जब से देखे तब प्रिवा नहीं बा तो हो जाला जैसे एगो एगो एगो एगो एग्जाम्पल होता है हाल ही में एगो प्लस गए से चेक करे फ्री नहीं रहा हम चेकिंग करते हैं सर तो एगो आकर उसका पूछा लोग है मैं फ्री नहीं बा तो हमने देख लिया सर फ्री नहीं बा तो एगो एगो कॉन्ट्रावर्शन हो गया हो प्लस
1: अच्छा अंत में हमने के ग्राहक लोग हमने के उन लोग के कौन सलाह दे बा उपभोक्ता
2: जैसे हमेशा बोली ला सर स्मार्ट बाइंग करके इम्पल्स बाइंग नहीं स्मार्ट बाइंग का बोले ला देख के परख के प्रिवा कंपेयर करके अब तो यूनिट प्राइस हो गल बाते सब चीज कंपेयर करके अपन बिजे के आधार पर खरीदारी करो
1: आप भाई मिट्टू जी
0: जैसे कंसुमेटर लोग के जैसे यूनिट प्राइसिंग आप नहीं वो कौन से पा जितना हाली अब नहीं बता कंपनी में कहे कौन से पा अलबा तो लोगों के लाभ हुए प्री में कुते लोजबा में कुते ब्रांड में तब एक लामताज हो कि नहीं जाए बता नहीं का जो होता है एक आदत पड़ जाए देखे कि यूनिट प्राइसिंग तो बस एक निमन खरीदारी किने और ही कैसे बताए क्योंकि प्रीवा की ट्रांसपेरेंस रही कंपनी तो कुछ किना तो ऐसा तब प्री पर किलो पर रही या लीट पर रही देखा कुछ में तो लाभ हुई तो हाउ का तीन मिला सा स्मार्ट बाइंग में से मिला था स्मार्ट कस्टमर और किने के चाहे ना सब चीज था वेरीफाई के प्री प्रोजी वेरीफाई करा देखा लाख में पारी बा है कि तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चल है में लेके तब तब खरीदारी की ना तब सब कौन से मात्र सेटिस्फाई हुई
1: तो आज की चर्चा से हमें ये समझने का मौका मिला कि यूनिट प्राइसिंग सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक ऐसा टूल है जो कंज्यूमर्स को सोच समझकर शॉपिंग करने और अपने पैसे की बेहतर वैल्यू पाने में मदद करता है तो हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी और श्री रणवीर सिंह मित्तू जी इन सारी जानकारियों के लिए आपको दिल से कह रहे हूँ कि धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों के ध्यान के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार फिर मिलेंगे

0: आइए सुनते समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनी शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मार्गरी हाइट्स से सभी कार्य तुरंत रोक देने की मांग की गई है। ये रियल एस्टेट कंपनी तमाहें केला तुगैल पहाड़ की ढलान पर अपने निर्माण कार्यों को विस्तार दे रही थी। रिवियनवा जिला परिषद द्वारा उसे स्टॉप ऑर्डर दिया गया है। जिला परिषद के अनुसार इस ग्रुप के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा 117(1) के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा था, इसी कारण ये स्टॉप ऑर्डर जारी किया गया है। संसद में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर बदलाव हो सकते हैं। फोमिलिता प्रोग्रेसिव के सदस्य चेतन बाबूलाल नए विपक्ष नेता बन सकते हैं। वे जुलेजोंगा का स्थान लेंगे जो वर्तमान में विपक्ष में बैठने वाले MSM के एकमात्र सांसद हैं। पिछले मई महीने से फोमिलिता प्रोग्रेसिव अपने तीन सांसदों पुल बिहोंशे, जुआना बिहोंशे और चेतन बाबूलाल के साथ विपक्ष के सबसे बड़े दल हैं। चेतन बाबूलाल ने पुष्टि की कि उन्होंने कल शाम ही राष्ट्रपति धर्म गोकुल को इसकी औपचारिक मांग की थी। सांसद वेरोनिक लेगोविन के साथ रोजिल के आदसू द्वारा आज पूछताछ की गई। वे आज करीब 9:30 बजे वहां पहुंची। 4 घंटों तक उनके साथ पूछताछ की गई। रियोनियन और मॉरिशस के बीच 155

0: 2.7 किलो गांजे की तस्करी की जांच के सिलसिले में उनके साथ पूछताछ की गई, जिसके तहत उनके पति गुलशन गोविंद और साथ में एक अन्य व्यक्ति रविंदर चिमाजी को भी गिरफ्तार किया गया था। सांसद बेहोनिक लुगोविन की एक एसयूवी को जब्त करके उसका परीक्षण किया गया। इस समय गांजे के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच के अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा दंपति की संपत्तियों पर भी जांच की जा रही है। विदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने दो रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल दागे हैं। वहां घना काला धुआं देखा गया। इस बीच रूसी अधिकारियों ने करीब 90 ड्रोन्स गिराए हैं। मलबों के कारण 3 घरों में आग भी लग गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio. Mana.

वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप शुरू होता है एक घंटा जो सिर्फ आपके दिल के लिए है। दिल से मिले दिल में आप सभी का स्वागत है। अगले वन आवर हम सुनेंगे 90s के दशक के वो गाने जिन्होंने प्यार को एक नई भाषा दी। तो अपना दिल थोड़ा सा नरम कर लीजिए, चलिए शुरुआत करते हैं दिल से मिले दिल की।

क्या गाना था ये दोस्तों। ऐसे ही गानों के लिए तो ये शो बना है, जहां हर धुन के साथ एक पुरानी याद जुड़ी होती है। अगर आपको भी कोई खास याद आ गई है तो मन में रखिए। फिलहाल सुनिए अगला गाना।

90s के दशक में एक खास तो बात थी, उस वक्त इजहारे इश्क इतना आसान नहीं था। ना मैसेज होते थे ना कॉल्स, बस होती थी आंखों की भाषा और गानों की मदद। शायद इसलिए इन गानों में आज भी इतनी सच्चाई महसूस होती है। सुनते रहिए ऑरेंज 3 रेडियो, मनोरंजन। मैं हूँ आपके साथ पूनम।

यकीन है कहीं ना कहीं आपके मन में भी कोई पुरानी याद जाग उठी होगी, शायद पहली मुलाकात या वो खत जो कभी भेजा ही नहीं गया। चलिए इस एहसास को आगे बढ़ाते चलते हैं, साथ जुड़े रहिए हमारे RM3 रेडियो मनोरंजन पर, और हम हैं आपके साथ

जो सुनते ही वक्त को पीछे ले जाते हैं। हो सकता है अभी वाला गाना भी आपको उन्हीं दिनों में ले गया हो। बस यही तो जादू है 90s के गानों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं दिल से मिले दिल प्रोग्राम।

दोस्तों, अब इस शो के आखिरी हिस्से की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन प्यार की ये महफिल अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी कुछ और खूबसूरत गाने बाकी हैं, तो अपने दिल को थोड़ा और खुला रखिए, सुनते रहिए रेडियो मनोरंजन।

तो यहीं आकर पूरा होता है आज का ये प्यार भरा वन आवर। उम्मीद है इन 90s के गानों ने आपके दिल को थोड़ा गुदगुदाया हो। फिर अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। मैं थी आपके साथ पूनम, लेकर आऊंगी कुछ और प्यार भरे धुने, प्यार भरे नगमे। तब तक अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए। अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम राम रसधारा में सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिवादन है। जय सियाराम, जय जय हनुमान। देवी और सज्जनों, इन दिनों हम सब बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, बहुत ही लगन के साथ श्रावण मास मना रहे हैं। हर शाम हम शिव अभिषेक में भाग लेने अपने अपने मंदिर जा रहे हैं और कई मंदिरों में रामायण सत्संग भी आयोजित किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज के इस राम रसधारा प्रोग्राम के जरिए हम भी अपने तरीके से इस श्रावण मास में राम जी की भक्ति, राम जी की श्रद्धा आप तक पहुंचा पाएंगे इन भजनों के जरिए।

0: रसधारा
1: जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम पानव महासाचार चारु पापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रनरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ वातात्मजम वानरसैन्ययुतम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जब व्याकुल धरती माँ अपनी उधार हेतु देवताओं से मांग करने गई कि उनको रावण के अत्याचारों से मुक्ति मिले, तब आकाशवाणी हुई और हरि ने आश्वासन दिया, भगवान श्री हरि ने आश्वासन दिया कि वो मनुष्य रूप धारण करके अवतार लेंगे। और तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर सभी देवतागण धरती पर उतरे वानर का रूप धारण करने के करके जिसके वे नर रूपी हरि श्री राम जी का की सेवा कर पाए। और उसी समय भगवान शिव जी ने हनुमान जी का रुद्र अवतार रूप धारण किया और वे भी अवतरित हुए, वे भी आए धरती पर राम जी की सेवा करने।

0: रसधारा
1: मन में राम बसा ले। श्रोताओं, रामचरितमानस सारे संप्रदायों का एक समागम है। अगर रामचरितमानस में राम जी की गाथा है, सीता मैया की गाथा है, तो उसी रामचरितमानस में सूर्यवंशी श्री राम जी की महिमा गाई जाती है। सूर्यवंशी यानी कि सौर्य संप्रदाय। रामचरितमानस में भगवान श्री गणेश जी भी आते हैं। रामचरितमानस में माँ अम्बा की भी आराधना की जाती है। लेकिन राम जी और सीता माँ के अलावा अगर किसी की गाथा सबसे ज्यादा की जाती है तो वो है शिव शंकर भोलेनाथ की। शिव जी जिनके हृदय से रामचरितमानस निकली, उत्पन्न हुई, रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमयु शिवा मन भाषा। अगर शिव जी के चटाओं से भगीरथी गंगा मैया बहती हैं, तो शिव जी के हृदय से निकली हुई राम रस धारा बनी वही जिसे कहते हैं रामचरितमानस।

0: रसधारा।
1: श्रोताओं, अगर देखा जाए तो रामचरितमानस में चार घाटों पर चार वक्ता इस गाथा को सुना रहे हैं। एक घाट पर शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं, दूसरे घाट पर ऋषि यज्ञवाल्क्य भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, तीसरे घाट पर काकभुशुंडी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं और चौथे घाट पर तुलसीदास जी पूज्यपाद संत तुलसीदास जी हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को सुना रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में आठ स्टैंजर्स की एक बहुत ही खूबसूरत सा स्तोत्र उन्होंने रचा है, जिसको नाम दिया गया है रुद्राष्टकम, और जिसमें अनेकों प्रकार से शिव जी का वर्णन किया गया है। उसका रसपान करते हैं आज राम रसधारा प्रोग्राम में।

0: रसधारा
1: रामचरितमानस के उत्तरकांड के इस रुद्राष्टकम में जिस प्रकार से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी का वर्णन किया है निराकार मूंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौली कल्लोल नीचारु गंगा नसत भाल बालेंदु कंथे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगादीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। देवी और सज्जनों, अगर आपको मौका मिले तो आप अवश्य इन श्लोकों के अर्थ को पर ध्यान डालें। आज के लिए हमारी भेंट यहीं तक चलती हैं। 5:50 पर आप किरण जानकी जी की प्रस्तुति में सुनेंगे हमारी धरोहर, और उसके पश्चात भोजपुरी गाना, और भोजपुरी गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार, जबकि हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी इस शनिवार को 4:00 प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। हमें आज्ञा दीजिए। संजय की ओर से धन्यवाद, नमस्कार, जय सियाराम, जय जय हनुमान। हर हर महादेव।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
4: नमस्ते हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा नेशनल हैंडलूम डे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर 7 अगस्त के मनावल जाला ई दिन पर भारतीय लोकल हैंडलूम के प्रोत्साहित करल जाला इंडियन ब्रांड और खादी के दुनिया भर में पहुंचावे के पहल करल जाला ई दिन मनावे के उद्देश्य है

0: आर्थिक रूप से हथकरघा उद्योग के मजबूत बनावे के और एक दुनिया में ब्रांड के तौर पर प्रस्तुत करेगी। हैंडलूम से बना खादी के साड़ी, सूट, दुपट्टा और कुर्ता और कमीज काफी सुविधाजनक है और कितने जना के ये पहला पसंद है, फर्स्ट चॉइस। हैंडलूम के इतिहास पर ध्यान देबा तो देखबा कि 1905 में जब बंगाल में विभाजन के घोषणा हो रहल तभी कोलकाता में एगो महासभा से स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत होल। भारत सरकार के तरफ से यही याद में हर बरी 7 अगस्त के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनावल जाला। 7 अगस्त 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई दिन के शुरुआत कर ले रलन और तब से हर बरिस हैंडलूम डे मनावल जाला। हैंडलूम भारत के धरोहर है, खातिर एकर महत्व भी विशेष है। आंध्र प्रदेश के कलमकारी, गुजरात के बांधनी, तमिलनाडु के कांजीवरम और महाराष्ट्र के पैठनी कुछ ऐसा हैंडलूम है जेके हथकरघा यानी हैंडवर्क के बनावल है। इमें लंबा समय लगेला, यही वजह से ये हैंडलूम उद्योग के भारत के सांस्कृतिक विरासत के एगो बहुत ही जरूरी भाग मानल जाला। ये उद्योग बड़ा संख्या में जनता के रोजगार देवेला, मतलब कि ये उद्योग नौकरी रोजगार के एगो बड़ा सा साधन है और खाली यही क्षेत्र में 70% औरत लोग काम करेलन सा। हैंडलूम ट्रेंड के बढ़ावा देवे खातिर कितने हस्ती सामने आईलन सा, कितने एक्ट्रेस हैंडलूम से बनल लुगा साड़ी पहने के एगो बहुत ही बेहतरीन माध्यम मानते हुए एक बढ़ावा दिलन सा। 2015 में जब पहला हला ई दिन के घोषणा करा कर रहा है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, तब से ई दिन मनावे के मकसद यही रहल कि ई कपड़ा के लोकप्रिय बनावल जाए और एकर जन समुदाय बा एकर बुनाई खातिर उ लोग के मदद पहुँचावे के, उ लोग के जन मेहनत बा, उ लोग के जन कटिबद्धता बा ई उद्योग के प्रति उ जनता तक पहुँचावे के। और आजकल तो टेक्नोलॉजी के दुनिया बा तो सोशल मीडिया पर भी बहुत ही सुंदर रूप से ई हैंडलूम दिवस के प्रमोशन चलेला। उ चाहे ट्विटर पर हैशटैग रही, चाहे उ फेसबुक पर रही, चाहे उ इंस्टाग्राम पर रही, हर एगो सोशल प्लेटफॉर्म पर हैंडलूम के प्रमोशन करल जला और बढ़ावा देवल जला एगो धरोहर के रूप में। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

सभी को नमस्कार। सायंकालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जोले शोंगा ने आज विपक्ष नेता के पद से और अदरियन जुवाल ने विपक्ष के व्हिप के हैसियत से इस्तीफा दे दिया। आज दिन के दौरान उन्होंने अपना त्याग पत्र गणराज्य के राष्ट्रपति को सौंपा। गांजे की तस्करी के मामले में आजसू के जांचकर्ताओं ने पूर्व जूनियर मंत्री वेरोनिक लुगोविन से लगभग 4 घंटों तक पूछताछ की। उन पर कोई आरोप दर्ज नहीं। ब्लैक रिवर जिला परिषद ने मॉगरी हाइट्स को अपना काम रोकने का आदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अनुसार कंपनी के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं और वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा का उल्लंघन कर रहा है। विदेश में एल नीनो की घटना दुनिया भर में भूखमरी और समस्या और बढ़ा रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार 2027 के आखिरी तक लगभग 29 मिलियन और लोगों के गंभीर खाद्य सुरक्षा की चपेट में आने का खतरा। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार विस्तार से। जोले शोंगा ने आज विपक्ष नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। आज दिन के दौरान उन्होंने अपना

0: त्याग पत्र गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल को सौंप दिया। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब फौमी रीता प्रोग्रेसिफ ने राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पद के लिए चेतन बाबूलाल का नाम प्रस्तावित किया है। आद्रियन जुवाल ने भी विपक्ष के व्हिप और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रीय सभा की स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा। अपने पत्र में आद्रियन जुवाल ने कहा कि पीएससी की अध्यक्षता करने उनके लिए सम्मान की बात रही। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों, स्पीकर और उनके दफ्तर के कर्मचारियों को भी आभार जताया। ये इस्तीफा फौमी रीता प्रोग्रेसिफ द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति को भेजे गए एक पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष नेता के पद की मांग की है। जानकारियों के मुताबिक उनकी पार्टी ने विपक्ष के नए नेता के लिए चेतन बाबूलाल का नाम सामने रखा है। वे इसके लिए जोलिझोंगा की जगह लेंगे, जो 2024 के आम चुनावों के बाद से ये पद संभाल रहे थे। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: MMMC अपना त्याग पत्र देने के बाद पॉल बेरांजे, जोआना बेरांजे और चेतन बाबूलाल ने 14 अप्रैल से विपक्ष की सीट ग्रहण की। फौ मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के गठन से पहले ही विपक्ष में इनकी संख्या अधिक रही, तभी ये विपक्ष नेता के पद की मांग कर सकते थे। लेकिन 4 महीने बाद 5 अगस्त 2026 की रात्रि को उनके द्वारा राष्ट्रपति से ये औपचारिक मांग की गई। गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति राउफ बंधन कहते हैं,
2: quand l'élection est finie, il y a des députés qui disent best loser.
1: चुनाव के बाद दो बेस्ट लूजर सांसद विपक्ष में रहे। राष्ट्रपति ने जोलिझोंगा को विपक्ष नेता नियुक्त किया, जिनका अनुभव है और एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। बाद में एक और सांसद ने इस्तीफा देकर निर्दलीय के रूप में विपक्ष में बैठा। 3 सांसद 3 अलग-अलग पार्टी के, किसी का बहुमत नहीं था। अप्रैल में अलगाव के बाद पॉल बेरांजे, जोआना और बाबूलाल विपक्ष में गए, लेकिन उनका दल कायम नहीं हुआ था। तब गणराज्य के राष्ट्रपति और स्पीकर ने देखा कि किसी और को विपक्ष नेता नहीं चुना जा सकता। जोलिझोंगा विपक्ष नेता के पद पर बने रहे। लगता है कि पॉल बेरांजे और स्पीकर के बीच लिझोंगा को अपने पद पर बने रहने के लिए सहमति हुई। धीरे धीरे उनका दल स्थापित हुआ। संसद छुट्टी पर हैं, जब कार्य दोबारा शुरू होगा तो उनका अधिकार बनता है कि वे विपक्ष नेता का पद संभाले। मॉरिशस गणराज्य के संविधान की धारा 73 के तहत विपक्ष नेता की नियुक्ति का अधिकार गणराज्य के राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुसार दल के लीडर को विपक्ष नेता नियुक्त किया जाता है। 3 सांसद हैं, अब वे फैसला लेंगे कि किसे नेता नियुक्त करना है। राष्ट्रपति स्पीकर से सलाह मशवरे करने के बाद पार्टी की इच्छा के अनुकूल ये तय करेंगे कि विपक्ष नेता कौन होगा। यदि वे चेतन बाबूलाल को बनाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मॉरिशस में इस तरह की स्थिति नई नहीं है। 2019 से 2024 के बीच विपक्ष नेता का पद 4 दफा बदला गया था। लेबर पार्टी के डॉक्टर अरविंद बुलेल ने 2 बार, जबकि पीएमएसडी के क्सावियर जुवाल और लेबर पार्टी के शकील मोहम्मद ने 1-1 बार इस पद को संभाला था।
0: गांजे की तस्करी के मामले में आज सुखे जांचकर्ताओं ने पूर्व जूनियर मंत्री वेरोनिक लुगोविन से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की। उन पर कोई अस्थायी आरोप दर्ज नहीं हुआ है। ये पूछताछ उनसे उनके पति गुलशन गोविंद से जुड़ी गांजे की कथित तस्करी की जांच के सिलसिले में की जा रही है। गुलशन गोविंद अभी भी हिरासत में है। सुअर पालन सेक्टर के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए पालकों और अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी के सदस्यों के बीच एक बैठक लगी। इस समिति का काम इस क्षेत्र के लिए टिकाऊ समाधान तलाशना है। पिछले साल फरवरी महीने में बनी इस समिति ने आज 6 अगस्त को हरिलाल बागजी हॉल में बैठक लगाई। किसानों के पास कृषि उद्योग मंत्रालय को अपने प्रस्ताव सौंपने के लिए 15 सितम्बर तक की मोहलत है। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
1: मॉरिशस में वर्तमान में 466 पालक हैं और देश में लगभग 24,000 सुअरों का

0: पालन किया जाता है। इनमें से 17,700 का पालन निर्धारित क्षेत्रों में जबकि 6,300 का पालन निर्धारित क्षेत्रों से बाहर होता है। पोर्ट्रीस में आयोजित एक बैठक में इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों ने उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: Créer une quarantaine pour un nouveau race, nouveau éleveur qui est bon rendement, facilite ma section manger pour mon éleveur.
2: Le seul problème qu'il y a, c'est un nouveau système de drain pour ces mortels, de canalisation, que demain après-demain, si nous avons une situation, nous sommes capables de dire comment trottoir comme ça, nous nettoyer nous-mêmes.
3: C'est une grande souffrance qui m'a éleveur dans le sud, est passée depuis des années. Ce qui m'a fait dire, c'est pas gouvernemental, mais c'est au niveau du système, parce que tout bénéficiaire qui vient visiter nous nous raconte nos problèmes, mais non, on n'est pas monté.
0: फरवरी में गठित अंतर मंत्री समिति खास रूप से सहमौते में पाई जाने वाली समस्याओं पर गौर कर रही है। साथ ही इनके अपशिष्ट को बायोगैस और बिजली में परिवर्तित करने की संभावना पर भी एक अध्ययन शुरू किया गया है। पर्यावरण संबंधी मुद्दा सबसे अहम रहता है, खास रूप से अपशिष्ट का निपटारा और हाइजीन से जुड़े मुद्दे चिंताजनक रहते हैं।
4: primordial et ce qui m'appelle développement soutenu.
0: मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं, पर्यावरण का पहलू महत्वपूर्ण है, टिकाऊ विकास होना चाहिए, सहमौते में अपशिष्ट का निपटारा होना चाहिए, वहां की नालियों की मरम्मत होनी चाहिए। कृषि उद्योग मंत्रालय को अपनी मांगे और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए पालकों को 15 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
5: मर्गरी हाइट्स को निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया गया है। ये रियल एस्टेट कंपनी देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित तमाहे के लातुरेल पहाड़ की ढलान पर अपनी निर्माण परियोजना बढ़ा रही है और अब ब्लैक रिवर जिला परिषद की तरफ से उसे ये काम रोकने का आदेश दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अनुसार कंपनी के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं है और वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट की धारा 117(1) का उल्लंघन कर रही है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में सुनिए।
6: दक्षिण पश्चिम में तमाहे के लातुरेल पहाड़ी की ढलान पर निर्माण कार्य कर रही रियल एस्टेट कंपनी मर्गरी हाइट्स को फिलहाल अपना काम रोकने का आदेश दिया गया है। ब्लैक रिवर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अनुसार कंपनी के पास बिल्डिंग एंड लैंड यूज परमिट नहीं है। परिषद का कहना है कि कंपनी स्थानीय कानून का उल्लंघन कर रही है, इसी वजह से कंपनी को नियमों का पालन करने का नोटिस जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से राकेश गुड़िया बताती है,
7: जब निर्माण के लिए परमिट नहीं होता तो ये नोटिस जारी किया जाता है। इसके तहत तुरंत काम रोकने का आदेश दिया जाता है और परमिट के लिए मांग सुपुर्द करने को कहा जाता है। अगर मंजूरी मिल गई तो 50,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो अदालती कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जाता है। ब्लैक रिवर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष हेमराज ओटू का कहना है कि विकास जरूरी है लेकिन कानूनों का पालन भी उतना ही आवश्यक है, खासकर ऐसे समय में जब इलाके को जलवायु संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हम स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। किसी भी गैर कानूनी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी पक्षों और संस्थाओं के नियमों का पालन करना चाहिए। निर्माण कार्य के लिए सभी पहलू का सख्ती से पालन करना होगा। इसकी वजह से औरों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मर्गरी हाइट्स को निर्माण की अनुमति लेने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय सीमा में अनुमति नहीं मिलती तो निर्माणाधीन विला को गिराने का आदेश भी जारी किया जा सकता है। उधर मर्गरी हाइट्स के प्रतिनिधि का कहना है कि उन्हें अब तक काम रोकने का कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है।
5: Two decades of partnership, a future of opportunity, ये विषय मॉरिशस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के बीच सहयोग के 20 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया। इस सिलसिले में सोमवार को बागातेल के वाला होटल में विशेष समारोह का आयोजन हुआ।
8: जून 2026 में मॉरिशस के सदस्य बनने के बाद से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर

0: माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने देश में प्रवासन शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें प्रवासन नीतियों के निर्माण में सहयोग, डायस्पोरा की भागीदारी को बढ़ावा देना और अन्य कई पहलें शामिल हैं। मॉरिशस के साथ सहयोग किए 20 वर्ष IOM की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाते हैं। मॉरिशस और सेशेल्स के लिए IOM की प्रमुख आलिया हिर्जी कहती हैं, हम प्रवृत्तियों को समझ सके हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, विदेश में डायस्पोरा की क्या स्थिति है और देश के विकास में किस तरह योगदान दे सकता है। हम प्रणाली मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो वीजा या परमिट से संबंधित हो। हम सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर। इस अवसर पर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक भी मॉरिशस पहुंचे हैं। फ्रांस सेलेस्ने कहते हैं, मॉरिशस को प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, बजाय कि लोग कभी भी और किसी भी तरीके से यहां आए। इस प्रक्रिया से सरकार फैसला ले सकती है कि कब कितने लोग आ सकते हैं और वो भी स्थानीय लोगों की रक्षा करते हुए। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रवासन के क्षेत्र में मॉरिशस के सामने कई चुनौतियां होंगी। मॉरिशस उन देशों में शामिल हैं जिन्हें विदेशी कामगारों की आवश्यकता है। हम कानूनी रूप से आने वाले उन प्रवासियों की ओर से समस्याओं का सामना करते हैं जो अपने ठहराव को बढ़ा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दफ्तर प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ काम कर रहा है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके।
1: Pour être capable d'adresser le problème de l'immigration qui nous gagnait.
2: Mauritius was at the time in 2012 one of the pilot countries to really make these linkages.
0: संगठन का ये भी मानना है कि प्रवासन के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन टिकाऊ विकास में योगदान दे सकता है, साथ ही मानव गरिमा को पूरा सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3: इस साल के घुड़दौर सीजन में घोड़ों के आयात का मुद्दा भी चर्चा में है। इस विषय पर बुधवार को पोटरी में MTCGC के मुख्यालय में प्रेस वार्ता हुई। संस्था के अध्यक्ष संतोष गजेंद्र ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में क्वारंटीन से जुड़े वजहों से हुई देरी अब इस सप्ताह के अंत तक दूर होने की उम्मीद है। इस दौरान घुड़दौर से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी बात की गई। अब चलिए एक सामान्य से हटकर विषय पर चर्चा। हाल में घर के कामों को लेकर छिड़ी बहस के बीच एक किशोर ने अपने मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। स्थानीय अखबारों में छिपी इस हालिया घटना की खबर ने घर पर बच्चों और माता पिता के की भूमिका पर जिम्मेदारियों को लेकर बहस को हवा दी है। अध्ययनों से पता चला है कि घर के कामकाज का बंटवारा इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान हो। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: घर के काम को लेकर माता पिता और बच्चों के बीच अलग अलग राय होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में प्रकाशित एक अखबार की खबर के बाद यह विषय फिर चर्चा में है। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनीता घुरा का कहना है कि बच्चों से घर का काम कराया जा सकता है, लेकिन ये उनके अधिकारों और उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। अधिकार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी है। हम बाल अधिकार कानून के अनुरूप चलते हैं। इसके तहत ये स्पष्ट है कि बच्चे घर के कामों में भागीदार हो सकते हैं, इस तरह उनका विकास भी होता है। कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों का परिवार के कामों में हिस्सा लेना भी उतना ही जरूरी है। घर के कामों में शामिल होने से बच्चे का विकास होता है, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी वे मजबूत होते हैं। ये जीवन जीने की कला है, इससे पारिवारिक संबंध सशक्त होते हैं और बच्चे आत्मनिर्भर भी होते हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ही जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। बेशक बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से काम देना चाहिए, नहीं तो ये एक अन्याय होगा। कई अध्ययनों में ये भी सामने आया है कि जब घर के काम आपसी समझ, बातचीत और सम्मान के साथ बांटे जाते

0: होती है तो परिवार का माहौल बेहतर और खुशहाल बना रहता है।
1: विदेशी समाचारों में एल नीनो की घटना दुनिया भर में भूखमरी की समस्या और बढ़ा रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार 2027 के आखिर तक लगभग 49 मिलियन और लोगों के गंभीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है और इस स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी इस समस्या से निपटने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रही हैं।

स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं और पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद भी मौसम बरसाती रहेगा, खासकर पूर्वी इलाकों पर बादल घिर रहेंगे और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। और हवा 15 से 20 किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसके अलावा मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में एक एंटीसाइक्लोन विकसित हो रहा है, जिस वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:36 पर, शाम को सूर्यास्त 5:54 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और न्यूज़ विभाग तथा तकनीकी पर फैजल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पांचू रोड स्टैनले रोजिल में उनासी साल की 79 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी रशीदा अब्दुल हकीम पैदाशी नाम नबी की मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान पांचू रोड स्टैनले रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौतै का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। मोसेलमान बस इत थोसे क्यूपिप में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड के श्री क्रियाशक्ति कुमार द्रुपद राव भूकन जो कुमार के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2:30 बजे मोगा फ्यूनरल सेंटर रॉ रोड पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM। एवेन्यू बेंगाली सुदना कथोबोन में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद

0: जय करण श्री विनोद, जय करण की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान एवेन्यू बंगाली सुदनाकाथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। रॉ रोड बोबोआ सेंट पियर में, रॉ रोड बोबोआ सेंट पियर में 70 साल के 70 years old के श्री गिरधारी बतू, श्री गिरधारी बतू जो बाई गुलित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी देवी भतु के मकान रॉय रोड बोबोआ सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। फ्लैट C13 NHDC कप मालोरो में, फ्लैट C13 NHDC कप मालोरो में 33 साल की 33 years old की श्रीमती कृति भुनमुन, श्रीमती कृति भुनमुन पैदाशी नाम मोहन और जो पूजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनकी माँ प्रतिमा मोहन के मकान फ्लैट C13 NHDC कप मालोरो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोएंटो पीमों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए इस वक्त। शाम के ठीक 6:24 हो गए हैं।
5: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, Radha. Once again, welcome back for you. दिलों की आवाज से पहले एक कार्यक्रम होती है जिसको हम कहते हैं नई सोच. जी हाँ दोस्तों, नई सोच कार्यक्रम के दरमियान कुछ एक यू नो एक स्पेशल बात हम करते हैं, और उस बात को करने से पहले हम आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत गाने सुनाना चाहेंगे जो मुझे लगता है ये सुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों हमें अपने दिल को ज़िद्दी बनाना चाहिए.

शाम के 6:42 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आज इस नई सोच कार्यक्रम में हम आपकी खिदमत क्या पेश करने वाले हैं। कुछ ऐसी बात आप लोगों के सामने हम बात करने वाले हैं जो सुनने के बाद शायद प्रैक्टिकली उसको इजीली आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपने आप को मतलब फ्रेश अप करने के बाद हम अपने काम में लग जाते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना, टिफ़िन बनाने हैं बच्चे के लिए, ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है। हम लोग एक्चुअली भूल जाते हैं कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल पाएंगे, हमारा जो दिन है वो इतना कंस्ट्रक्टिव, इंटरेस्टिंग और अपलिफ्टिंग नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 15 मिनट बस आप उठकर जब आप बाहर जा कर के अपने आसपास में पाए जाने वाले जो नेचर है उसके बगल में रह करके थोड़ा सा थोड़ी सी लंबी सांस लीजिए और अपने आप से बात कीजिए कि मैं इस दिन की शुरुआत किस प्रकार से कर सकूं, इस शुरुआत के अलग अलग डायमेंशन को कैसे मैं अपना सकता हूं, जो प्रॉब्लम्स कल अटके हुए थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकता हूं, कौन कौन से मेथड्स अपना सकता हूं जिससे ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाए और किसी का दिल भी ना टूटे या ठेस ना पहुंचे। और अगर इन सभी बातों को हम लोग अच्छी तरह से उसको मतलब एक सेटिंग के साथ सोचेंगे तो व्हाई नॉट, आपका दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके बारे में सोचिए, हर दिन एक नई शुरुआत के साथ वही काम एक अलग ढंग से करना।

दोस्तों इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम से कनेक्टेड विवा भी उदय और दिलों की आवाज कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर में ला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

दोस्तों हमारा जो दीवाना है, हमारा जो दिल है एकदम दीवानेपन में भर गई है और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम बैक, दिस इज योर दिलों की आवाज कार्यक्रम अभी के साथ रात के 9 बजे तक का।

जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है और उन लोगों को दिल से हम कहना चाहेंगे कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है। और बहुत सारे लोग शादी को लेकर के वे लोग अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, रात बाकी है और बात भी बाकी है। और ऐसे टाइम पर 5250620 पर आप अपना मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं 402-80-70 पर। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उनको यहाँ पर हम चलाएंगे।

उन दिनों जबकि तुम थे यहाँ, जिंदगी जागी जागी सी थी, सारे मौसम बड़े मेहरबान दोस्त थे, रास्ते दावतनामे थे जो मंजिलों ने लिखे थे जमी पर हमारे लिए, पेड़ बाहें पसारे खड़े थे हमें छाँव की शॉल पहनाने के वास्ते, शाम को सब सितारे बहुत मुस्कुराते थे जब देखते थे हमें, आती जाती हवाएं कोई गीत खुशबू का गाती हुई छेड़ती थीं गुजर जाती थीं, आसमां पिघले नीलम का एक गहरा तालाब था जिसमें हर रात एक चांद का फूल खिलता था, और पिघले नीलम की लहरों में बहता हुआ वो हमारे दिलों के किनारों को छू

जाने का शौक है। बरसों से यूं तो एक अमावस की रात है, अब इसको हौसला कहूं कि जिद की बात है। दिल कहता है अंधेरे में भी रोशनी तो है,

बात कैसे आएगी? आप ये क्यों समझ न पाते हैं? याद तो सिर्फ उनकी आती है, हम कभी जिनको भूल जाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये दैट वाज कुणाल गंजावाला और ये एक ऐसा गीत है जो बहुत सारे लोगों को पसंद था, उसने इसीलिए हमने इस गाने की फरमाइश की है। और चलिए अगला गीत जो है हम उन तमाम दोस्तों के नाम चलाएंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रात बाकी है और बात भी बाकी है।

और बहुत सारे लोग अभी इस वक्त घर की ओर जा रहे हैं काम करने के बाद, थके हुए हैं। अगर बारिश हो रही है सो बी केयरफुल ऑन रोड, क्योंकि ऐसे टाइम पर बारिश का होना जायज़ है। श्रावण मास चल रहा है सो ऑटोमेटिकली बारिश होगी, और अगर बारिश हो रही है सो बी केयरफुल ऑन रोड माय दोस्तों। और चलिए अगला गीत स्पेशली हम उन तमाम दोस्तों के इस नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त वे लोग काफी बिजी हैं अपने किचन में, क्योंकि ऐसे टाइम पर कभी कभी मैसेजेस भेजना बहुत ही टफ हो जाता है, मुझे पता है, आई नो दैट। लेकिन कोई बात नहीं, अगला जो गीत है उन आपके नाम हम चलाएंगे। एंड राइट नाउ वी डू हैव सुंदर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है। और वी ऑल्सो हैव यहाँ पर फैजाल, और जनाब फैजाल जो इस वक्त शुमें गुरी से हमें याद करें, उन आपने भी एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, उसको हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला गीत स्पेशली हम मिस्टर जीनो के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त काम कर रही हैं। और साथ ही साथ वी डू हैव हंसिनी, वी हैव फरहा, वी हैव मानसी, और जितने हेमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिशा हैं और कविश हैं, साथ ही साथ हैं एलविना। तो चलिए ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

जी दोस्तों, इस वक्त रात के 7:50 हो गए हैं। ये गाना खासकर हम दैविक वेद के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। उनके लवली मामा हैं जिनका नाम है नानो, और साथ ही साथ उनके मामू हैं विनय, और वी डू हैव रोशन, योगिता, याना, दिलान, सानवी, यतीश, साथ ही साथ है नील, निवेश जो इस वक्त मायामी में है बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv, वो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ये गाना खासकर उन लोगों के नाम

चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय लोखन फ्रॉम ग्रैंडबोआ. उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है और ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है. इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे सेकेंड आवर ऑफ दिलों की आवाज़.

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक वंस अगेन फॉर यू दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। नमस्कार और आदाब। और इस वक्त रात की 8:06 हो गए हैं और चलिए यहाँ पर आप लोगों के मैसेजेस और आपके फ़ोन कॉल्स मिलते जा रहे हैं 402-4070 पर 402-8070 पर। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यू मे ऑल्सो सेंड अस योर मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। जी हाँ दोस्तों, अगला जो गीत है स्पेशली हम लविशान के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जिनकी शादी होने वाली है और उनके लवली फियांसे मतलब उनकी जो होने वाली जो पत्नी है उनके नाम।

दिस इज परदेस मूवी और हम आपको बताना चाहेंगे इसी गीत से सुनने के बाद, खासकर जब आप ड्राइव कर रही हैं अलोन और अपने दिल का भरास निकाल रही हैं या फिर अपने दिल की जो बातें हैं खुद से आप कह रही हैं, आपकी आंखों से आंसू भी छलकने लग गए हैं, तब जाकर के इस तरह के गाने सामने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज़ कार्यक्रम अभी के साथ। चलिए टाइम फॉर मी टू रीड सम ऑफ द मैसेजेस वी डू हैव। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी हाँ। सो वी डू हैव रिहाना फ्रॉम फिनिक्स, जालिला और जियाद जो इस वक्त हमें याद कर रही हैं बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv, और रिहाना जो फिनिक्स से हैं उन दोनों को मिस कर रहे हैं और जो अगला गीत है स्पेशली उनके नाम वो डेडिकेट करना चाहते हैं। हेलो अभी, दिस इज़ राजन देवी मिलान इटली से। आज मेरे बेटे रितीश देवी का जन्मदिन है, 26 साल के हो गए हैं। सो बहुत बहुत सारे शुभकामना का गुलदस्ता यहाँ पर उनके सभी फैमिली मेंबर्स दे रही हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम इटली। क्या बात है। सो बेटा रितीश देवी, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहना, आबाद रहना, इसी तरह से हमारे जो रेडियो हैं उसके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहना। वी डू हैव संध्या फ्रॉम सैंपिया, आपने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, ये गाना उन आपके पूरे परिवार के नाम। एंड ऑफकोर्स राइट नाउ वी डू हैव रेनिका फ्रॉम लंडन। ओ माई गॉड, बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों से हमें याद कर रही हैं। क्या बात है, खुश हो गए जी, मोगैम्बो खुश हुआ। दिस इज रेनिका, हेलो अभी, दिस इज गुड इवनिंग। प्लीज अगला गीत मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए हो जाए, इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। गुड मेमोरीज अभी, दिस इज सरिता फ्रॉम गुडलैंड्स। क्या बात है, तो नाइस सॉन्ग सिलेक्शन अभी विद गुड मेमोरीज। एक्चुअली इस इन यादों को और ज़्यादा ताज़ा बनाने के लिए मैंने नहीं चुना, बस कि आप लोगों ने चुना और आप लोगों के जो चुनाव हैं, आप लोगों के जो चयन हैं वो तालीफ़े काबिल हैं।

कभी कभी ऐसे भी गाना सुनना पसंद करते हैं बहुत सारे लोग, थोड़ा सा रिमिक्स भी हो जाता है और मिक्स भी हो जाता है ना, अच्छी बात है जी। अभी यू आर सो स्पेशल, वन ऑफ द बेस्ट, ओ वन ऑफ द बेस्ट, ओ जी सो बापरे, इसने किसने, ये किसने भेजा है, सो दैट्स कौन है ये, उषा, ओके उषा, ये गाना आपके नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है और इस वक्त हमारे साथ प्रीतम है जो हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं फ्रॉम न्यू ग्रोव। उन्होंने कहा वो हमारे शो को बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। ये है मोहब्बत, ये जो मोहब्बत है फ्रॉम कति पतंग। चलिए ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे मिस्टर जे जे लाल के नाम, जो वैंकूवर कनाडा से हमें याद कर रहे हैं बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। और साथ ही साथ जो अगला गीत है वी विल बी डेडिकेटिंग फॉर करुणा अनीता फ्रॉम मोंडालबेया, अमृता है और उनके सभी दोस्तों के नाम और उनके सभी परिवार के सदस्यों के नाम।

0: सजनी पसंद नहीं, फिर क्यों ये दरवाजा बंद नहीं।
1: करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, सुनते हो सजन छननन छननन छननन।

चलिए ये गाना खासकर हम करुणा के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। उनकी लवली बेटी है जिनका नाम है रिधिमा, उनके लवली पति हैं जिनका नाम है विक्रम, उनके बेटे हैं

चलिए ये गाना खासकर उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो मैंने उन लोगों का गाना नहीं चला पाया, लेकिन ये गाना डेफिनेटली यू विल बी एंजॉयिंग। पता है एक दो घंटे में इतने सारे फ़ोन कॉल्स मिलते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है सभी गाने को चलाने का, सभी की मांगों को पूरा करने का। सो गाइस इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा साथ दिया। नेक्स्ट थर्सडे हम फिर से मिलेंगे, तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।

0: अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day, all
0: NBC
3: night.
0: TV, right रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: जो फुसल गया वो फुसल गया। तू भूल गया डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी? उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पागल हो सकती है वो।
5: हाँ, मैं पागल हो गई हूँ।
6: पर अंशु टिया राज का बेटा है, और जब उसे ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में?
5: नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ माँ।
4: उसे ना कहकर और तकलीफ दे रहा है तू।
7: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
0: शनिवार 8 अगस्त को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे दिल का रिश्ता 2003 की ये मूवी ऐश्वर्या राय और अर्जुन रामपाल पर फिल्माई गई दिल का रिश्ता।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज है 6 अगस्त 2026 के रात्रि बीफे के दिन है और 9:03 होल बा। हम किरण आप सब कोई के स्वागत करत है, आप सब कोई के प्यार भरा नमस्ते। आज के दिन आप सब कोई के बहुत अच्छा से बीतल और बहुत सुंदर रूप से ये जोन पूरा सप्ताह बा ओकर आखिर तक आवत है जा और काल सुख है। आशा करत है जा कि आज के शाम जितना अच्छा से चली आपके सुख के दिन भी उतने ही अच्छा से चली। तो ये शाम के सुंदर शुरुआत करत है जा आपके साथ आपके

0: ये मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का के संगे और यही उम्मीद बा कि जितना प्यार से जितना बेसब्री से ये कार्यक्रम के इंतजार रहेला उतने ही प्यार से ये प्रोग्राम के सुन बजा अभी 9 बजे से रात के 11 बजे तक आपके ये मनपसंद प्रोग्राम चले होला बा आपके ही मनपसंद गीत के आधार पर त शुरुआत करब जा आपके ही सबसे जो मनपसंद गीत है मनपसंद एल्बम है भोजपुरी बाजा बाजे बॉय से एगो बहुत ही उत्साहपूर्ण गीत आजकल देश भर में बहुत एगो सुंदर माहौल छाल बा एक तरफ श्रावण मास उधर आदि गुजरल लेंदी के अब गणेश चतुर्थी के उधर तैयारी चलता ता एक बगल बहुत जल्द अब यमुनबी के भी तैयारी शुरू हो जाए मॉरिशियस के खासियत यही है कि हमने के देश में कबो कोनो पर्व समाप्त ही नहीं होवेला जहाँ एगो उत्साह समाप्त होल तो दूसरा शुरू हो जाला तो चला यही उत्साह के माहौल में रही जा और ई रात्रि जोन बा ओकर हर एगो क्षण खुशी के साथ बिताई जा।
1: जलपुरी

रात के 9:13 होल बा और अभी थोड़ा घर आगे हम बोलत रही कि इसे हर एगो समुदाय हर एगो कौम हमी के देश में अलग अलग पर्व मनावे के जो तैयारी बा उ करत हवन जा कुछ पर्व मनावल गल कुछ मनावल जाता और कुछ के तैयारी हुआ था और हम ये भूला गली बोलेंगे कि बहुत जल्द 2 सप्ताह में लासोम्पशो भी मनावत है जा तो यही है हमने के देश के सुंदरता और मॉरिशस जहाँ भी जाइबा तो ये सब पर्व खातिर ये सब प्रथा खातिर बहुत ज़्यादा आवेला जे भी छोड़ के गलबा मोरिशवा ओके अपन देश हर एगो मौका हर एगो घड़ी हर एगो मौसम में बहुत ज़्यादा आवेला और ऐसे ही एगो अभी फरमाइश आलबा छोर के मोरिशवा के एगो नानी अपन पोता खातिर ये गीत मांगत हवन उनकर पोता उनकर से दूर हवन लेकिन उनकर देश से निकल के दूसर देश जात हवन दोनों मॉरिशस के हवन जा लेकिन अलग अलग देश में बसल हवन जा अब शीला जी उनकर पोता रुद्राक्ष उनकर देश छोड़ के दूसर देश जाता तो उनका बहुत

उदास लगता, बहुत याद आवत हवन और ये मौका पर आप ये गीत सुने चाहत हवा आतिश भगीरथी के आवाज़ में। और हमने संगे हबी हवन घोंगोप से सुनीता जी, सुनीता जी के ओर से उनकर बहिन विमाला के नाम जे कोंगुमा से हमने के सुनत हवन उनकर नाम ये गीत। उधर से जिया मिल फॉरेस्ट साइड के शांता सुकारी जी भी हमने संगे जुड़ल हवन और शांता सुकारी जी पूरा परिवार के नाम ये गीत मांगत हवन। बेलिया से आत्माराम जी हवन जे अपन चार गो बहिन ललिता, छोटी, प्रभावती और सुदेवी के नाम गीत करत हवन। और वाशेगी से धनी जी हमने के सुनत हवन और उनकर पसंद के गीत अभी थोड़ा घरी में चली। तो चला फिलहाल सुनी जा छोर के मोरिसवा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning station.
4: और आज 6 अगस्त 2026 के जितना कोई के जन्मदिन बा, आप सब कोई के ई प्रोग्राम के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनल रही, आपके मुंह पर हमेशा मुस्कान सजल रही और आपके साथ परिवार और अपनों के साथ हमेशा हमेशा रही। यही आशीर्वाद, यही प्यार, यही दुआ के साथ ई अगला गीत आप सब कोई के नाम, जेकर भी आज जन्मदिन बा, बसंत सुपोल के आवाज़ में।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब साले आईने को सच बोलने की बीमारी लग जाती है।
2: वो आपकी कहानी के आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपके जासूसी तजुर्बों से?
3: राजस्थान ग्रामीण विकास नहर परियोजना के विरोध से जुड़ी समाज सेविका मनोरमा शुक्ला का कल रात एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।
0: रविवार 9 अगस्त को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म मनोरमा 6 फीट अंडर 2007 की ये मूवी अभय देओल और गुलपनाग पर फिल्माई गई। मनोरमा 6 फीट अंडर।

कृष्ण उखाच की आवाज में ये गीत खास तौर पर तेरूज से शांति जी के नाम, शांति जी ये गीत खास तौर पर अपन भगीना ओम के नाम करा था वन जे अपन दागोचिया रहेला और दागोचिया के अपन पूरा मराठी परिवार के नाम।

रात के 9:38 होलबा और अगला जनगीत चली धनाजी नावजी की आवाज़ में, धुआं उड़ैले चलल जाला, सिटी बजैले चलल जाला, जवानी के रेल ई गीत बॉशरी के धनी जी के खास फरमाइश पर।

0: नाउ किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day, all
0: NBC
3: night.
0: NBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: जो फुसल गया वो फुसल गया। तू भूल गया डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी? उससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पागल हो सकती है वो।
5: हाँ, मैं पागल हो गई हूँ।
6: पर अंशु टीआर राज का बेटा है और जब उसे ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में?
5: नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ माँ।
4: उसे ना कहकर और तकलीफ दे रहा है तू।
7: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
0: शनिवार 8 अगस्त को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे दिल का रिश्ता 2003 की ये मूवी ऐश्वर्या राय और अर्जुन रामपाल पर फिल्माई गई दिल का रिश्ता।

रात के 10:01 होलबा और आपके मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का ई बखत चलाता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और आप लोग के साथ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा एक घंटा समाप्त हो गल और एक घंटा रह गल बा और ई बाकी एक घंटा में भी आप ही के मनपसंद गीत चली। अगला जन गीत चले होला बा वह विजेश गणपत के आवाज़ में सेल्फी। आजकल सेल्फी के ज़माना है, चाहे वो कोई भी मौका रही, सेल्फी के बिना कहाँ कोनो भी मौका सकी चले। तो ये गीत आप सब कोई के नाम जे अभी हमने के सुना था वजह, जे हमने के साथ देवा था वजह हमेशा की तरह, और ये गीत खास तौर पर फ्लिक ऑन फ्लक से अनिता जी के नाम। एक बाद जो अगला गीत चली वो नीरज गुप्त मधु की आवाज़ में रही, और ये सब मजाकिया गीत, उत्साहपूर्ण गीत और खुशी होला माहौल के गीत आप सब कोई के नाम और आप ही के पसंद के गीत आज भी चलता हमेशा की तरह। आज के बाद हमने की मुलाकात फिर से हुई होला बा अवत लेंदी के। अभी भी हमने के पूरा एक घंटा के प्रोग्राम चले होला बा, तो हमने संगे जुड़ल रहिया, चाहे वो काम में हुई बा, चाहे सफ़र पर हुई बा, चाहे लेटे लेटे हमने के सुनत हुई बा या फिर खाईते खाईते सुनत हुई बा। आप सब कोई के साथ हमी के भी उतना ही पसंद है जितना कि आपके ई कार्यक्रम के साथ देवे में मज़ा आवेला। तो चला अगला गीत सेल्फी आप सब कोई के नाम।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night.
0: NBC TV programs ki jhalkiyan.
4: Har kisi ki zindagi mein ek aisa waqt bhi aata hai jab saale aaine ko sach bolne ki bimari lag jati hai.
5: को आपकी कहानी के आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपके जासूसी तजुर्बों से?
6: राजस्थान ग्रामीण विकास नहर परियोजना के विरोध से जुड़ी समाज सेविका मनोरमा शुक्ला का कल रात एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।
0: रविवार 9 अगस्त को NBC3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म मनोरमा 6 Feet Under 2007 की ये मूवी अभय देओल और गुलपनाग पर फिल्माई गई। मनोरमा 6 Feet Under

0: जीवन संगे।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम जी। हाँ दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं, वादे के मुताबिक देखा वापस आ गए हैं फिर से आपका साथ देने के लिए। जी हाँ, ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल तक पहुंच ही जाते हैं। रेडियो मॉरिशस के सुनहरे पल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के वही गीत जो सालों बाद भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं। तो आराम से बैठ जाइए और इस सुरीले सफर का आप मजा ले लीजिए हमारे साथ।

स्कूल के दिन और वो हसीन पल, आज सब कुछ फिर से याद आने वाला है आपको। रेडियो मॉरिशस के सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के अनमोल नगमे जो हर दिल को छू लेते हैं। तो चलिए मिलकर जो है जीते हैं कुछ सुनहरे पल, और हम तो चाहते हैं कि आप आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन खूबसूरत नगमों में आप बस खो जाइए और अपनी खूबसूरत खूबसूरत यादों को फिर से आप याद कर लीजिए।

वैसे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या आपको पता है कि पुराने गीतों में एक अलग ही जादू होता है? एक छोटा सा गीत हमें सालों पीछे ले जाता है। लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऐसे गिने चुने नगमे आज रेडियो मॉरिशस पर। जी हाँ, वही गीत जो आपके दिल के बहुत ही करीब है। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी खूबसूरत सफर का आप हिस्सा बन जाइए। और अगला नगमा हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से बैठे हैं, साथ दे रहे हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करते करते बस मुस्कुरा रहे हैं।

आज के इस खूबसूरत सफर में हमारा साथ दीजिए और पुराने बॉलीवुड के गीतों के साथ अपनी यादों को फिर से ताज़ा कर लीजिए। रेडियो मॉरिशस के साथ बस यूं ही बने रहे। और गिनिशा तो चुन चुन कर लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने जो आम प्रीति मच्छों की सुनते ही आपको उनकी याद जरूर आएगी, पता है ना किसके, तो बस मुस्कुराइए और उनको याद कर लीजिए।

उम्मीद करते हैं दिल से कि आप हर एक गाने को दिल से एंजॉय कर रहे हो। वैसे आप कहाँ पे हो, काम पे? ओ तो हम आपको जरूर विश करना चाहेंगे बोको आज, आप अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझना, हम भी तो हैं साथ देने के लिए और हम भी तो काम कर रहे हैं। और बाकी जो मॉरिशस अक्रॉस द ग्लोब हमें सुन रहे हैं सात समुंदर पार से, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खास कर आपके लिए, क्योंकि ऐसे गिने चुने नगमे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। तो बस यूं ही साथ देते रहे और खूबसूरत गानों का आप आनंद लीजिए।

खूबसूरत नगमे सुनाते सुनाते जी कब हम पहुंच गए इस खूबसूरत शो के अंत में हमें पता ही नहीं चला। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, और बस अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के शो में ऑन रेडियो मॉरिशस।

पूछो मेरी आहों को समझो, तुम पूजा हम पुजारी, तुम किस्मत

जर जवान काळ।

0: घर में दिल में।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो